चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती है। पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़कर के मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी सांस हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। और जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ, ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर, ये मौका आए ना आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा, आई तो है किंतु कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में कोई ग्लानी ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा ना समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे, मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूँ मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो,
तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है। जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से, किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण के आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा। अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा।

क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम, राधा का प्रेम। कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा। राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार

ऐसी श्री राधा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटे। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

राधा नाम से श्री कृष्ण को, वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना कुछ अच्छा ना लगे, स्वप्न में भी

सबसे धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है वो है राधा और कृष्ण। प्रेम की परिभाषा कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा, उसकी

प्रेम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है, वो भक्त नहीं है, वो साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी, कैसे समा सकती। लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका। भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

0: आज ना शुरुआत ही करते हैं मेरे माइंड के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, और उस कंफ्यूजन को कंक्लूजन तक लेके जाने की मेरी आज कोशिश रही। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और इसका कंक्लूजन आज सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ही मुझे दे सकते हैं जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। सिस्टर, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब उन्हें पानी ऑफर करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर पानी अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद कुछ चैंट करके फिर उसे थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो एक बार मैंने रैंडम किसी से पूछा था, तो उसने मुझे ये बोला कि हम पानी के एनर्जीज को चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ब्लैंक हूं तब से लेके अभी तक, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ये वाटर चार्ज या फूड चार्ज क्या होता है।
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं, उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेस लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से, फॉर एग्जांपल आपके लिए इजी कर देती हूँ कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है। और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे, यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहां भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहां आप विशेष वहां रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूं तो वहां रेड कलर की रेज डालें, कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहां पॉइंट है वो पेन का, वहां विशेष फोकस करें और वहां के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि हम जो हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बस ऐसा बना सकते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर हमारे जाएं तो वो बॉडी को बेनिफिट दें। और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: सोच, तेरा बच्चा कल तुझसे पूछे,
1: पापा पानी कहाँ से आता है?
0: तू क्या बताएगा?
1: कि कभी नल खोल कर छोड़ देते थे,
0: या ये कि हमने वक्त रहते समझ लिया था
1: पानी बचाना मतलब
0: अपने आने वाले कल को बचाना।
1: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
2: Get ready, Faridabad. Because for the first time in your area, the beats of Dandiya, DJ or Dhol are coming together for an unforgettable night.
3: Clorox Entertainment present Clorox Garba Night. 17 October, शाम 6 बजे से.
2: Venue partner, Immense Residency Hotel, Sector 28, Faridabad. Radio partner, Radio Maharani 89.6 FM.
3: Supporting partners, Art of Living, Faridabad. Studio One, Dance and Fitness.
2: Right partner, Vogue. Women Occupied Cars. Sport partner, Not Out. Health partner, Ajaveda. Security partner, Big Panther.
3: DJ Dhol, Dandiya, non-stop Garba. So gather your friends, family and your Garba gang.
2: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है full on Garba night.
4: चमा चमा नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, non-stop हल्ला मचेगा.
3: Tickets available हैं all events की site पे, या फिर आप contact कर सकते हैं 9311304040 पर.
2: Glorix Garba night 2026. इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग, DJ की बीट और ढोल का धमाल, सब एक साथ।

ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?

पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में मुस्लिम्स में हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, तो उस लाइट से जैसे सूर्य से, फॉर एग्जांपल आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहां भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहां आप विशेष वहां रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूं तो वहां रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का, तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहां पॉइंट है वो पेन का, वहां विशेष फोकस करें और वहां के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है।

हमारे जो पूरे दिन का रूटीन है, जो हमें आलस आता है, जो हमें नींद आती है, जो हमें मन नहीं लगता है चीजों में, वो सब नॉर्मलाइज हो सकता है। और ये चीजें हम लोग को कभी पता ही नहीं चलती थी, इसलिए शायद हम कर नहीं पा रहे हैं। और वो जो बोलते हैं ना, दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत सक्सीड कर रहे हैं, और शायद वो लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हो, इसीलिए वो लाइफ में इतना सक्सीड कर रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

everyone. Myself, Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा.

0: और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे ज़रूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
1: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गालियाँ दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के, भिक्षुक जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरुजी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला गया जिस जगह वो अगले दिन गया, पहले पिछले दिन गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जा कर के उसी लेडी ने सॉरी फील किया, कहा कि आप सच में मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कल आपको मैंने गुस्से में भोजन दे दिया, कल मेरी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था। तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करके फिर उन्होंने भिक्षा दी तो वहाँ से लेकर आए। सेम प्रोसेस यहाँ गुरु जी ने जब भोजन लिया तो उनका भी सेम प्रोसेस था, वो भी सॉरी फील करने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कल मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शिष्यों को समझ नहीं आया, उस शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल आपने इतना गुस्सा किया, आज आप, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये भोजन कहाँ से लाए थे। तो उन्होंने बताया कि जैसा आपने किया ऐसे वो जो लेडी थी उसने भी ऐसे ही किया, कल वो बहुत गुस्से में थी और कहा इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लिसनर्स में सभी अगर भोजन बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाए कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
0: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं। और जो आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि वो गुरुजी के पास जाता था तो उनको भी खा के वो आ गया, टू गुड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच इतने अच्छी तरह से ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमको आगे तक याद रहे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नवरात्र सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं, बल्कि ये 9 रूप हैं माँ दुर्गा की शक्ति के। 9 अलग अलग संदेश हैं और एक ऐसा मौका है जब हम अपनी परंपराओं, आस्थाओं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? हर दिन की अपनी क्या खासियत है? व्रत पूजा और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं के पीछे क्या महत्व है और इन परंपराओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे जोड़ सकते हैं? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य कार्तिकेय जी। आचार्य जी, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिन्हें शक्ति, स्टेबिलिटी और नए आरंभ का प्रतीक माना जाता है। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे फेज आते हैं जब हमें सब कुछ दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, तो माँ शैलपुत्री से हमें क्या सीखना चाहिए, स्पेशली जब किसी नए फेज की शुरुआत को लेकर हमारे अंदर डर हो?
1: देखिए, जब भी हमें सब कुछ शून्य से यानी जीरो से शुरू करना पड़ता है तो इंसान के मन में डर आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम माँ शैलपुत्री के स्वरूप को देखें तो वो हिमालय की पुत्री हैं, यानी अधिक स्थिरता और मजबूती का प्रतीक। डर और कन्फ्यूजन तब तक ही रहती है जब तक हम बाहर की परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं। जिस पल हम अपने भीतर झांकते हैं, हमें यह समझ आता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मा की शक्ति वही रहती है। इसीलिए नए चरण की शुरुआत का मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति ने हमें एक और बेहतरीन कैनवास दिया है, जिस पर हम अपने जीवन के सबसे सुंदर तस्वीर दोबारा उभार सकते हैं। डर को गले लगाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि स्थिरता बाहर नहीं, आपके भीतर है।
0: नवरात्रि के 9 दिन और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM और आचार्य कार्तिकेय जी के साथ। आस्था और ज्ञान के खास सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी।

0: वक्त हो गया है यहाँ पर आपको एक और प्रो टिप देने का। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी को अपने पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी या पीसफुल चीजों के साथ शुरू करना हो तो उसे अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐसी क्या चीजें ऐड कर लेनी चाहिए जिससे उसकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली चार्ज रहे और वो काफी मोटिवेटेड रहे।
1: मेरे किसी एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे, जैसे चार्जिंग तो हम करते ही हैं। उन्होंने एक बात रखी थी, मैं आज यहाँ सामने आपके रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं उठता हूँ और सबसे पहले जब धरती पर पैर रखता हूँ तो मैं हाथ झुकाकर धरती को सर पे मींस जैसे नमस्कार करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ कि आज मैं पैर जो है आपके ऊपर रख रहा हूँ और पूरे दिन आप मुझे सपोर्ट करें। तो इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ें थैंकिंग जो एटीट्यूड अपना बना लें कि हर चीज़ का थैंक्स करना शुरू करें। हमने ये तो सीखा बचपन में कि अगर कॉपी को पैर लग जाता है तो हम टच करते हैं, बैग को लग गया तो टच करते हैं। बहुत गुड हैबिट है, ये बहुत अच्छी हैबिट है, ये कोई बेकार मैं नहीं, कई लोग इसको भी गलत मानते हैं, बट आई फील कि आप कहीं तो उसके प्रति झुकने की एक भावना तो आई, भले अंदर से शायद हम एम्प्टी होकर के झुक रहे क्योंकि आदत पड़ गई है, लेकिन इस आदत की वजह से ही सामने वाले के अंदर एक भाव जाग गया कि ये स्पिरिचुअल है। तो हम कुछ ऐसा थैंकिंग बिहेवियर करें। मैंने एक व्यक्ति से और भी सुना था कि वो अपने लैपटॉप को थैंक्स करते हैं, तो क्या आपने कभी अपने लैपटॉप को थैंक यू किया है?
2: नहीं,
1: कभी हमने अपने सिस्टम जो हम गैजेट्स यूज करते हैं कभी मोबाइल को थैंक यू किया है? हमने कभी नहीं किया है। तो अगर हम अपने नेचर में एक थैंकिंग बिहेवियर ले आए कि सुबह उस परमात्मा का थैंक्स करें कि आज क्या आपने दिन देखने का मुझे मौका दिया, अपनी बॉडी को थैंक्स करें कि आज आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए बिकॉज मुझे आज बहुत आपका यूज करना है, अपने लिवर का, अपने स्टमक का आप थैंक्स करें। कई ऐसा कहेंगे हंसने वाली बात है, लेकिन अगर आप सच में जानेंगे, अगर आप इसे डेली रूटीन में ले आएंगे, आपका स्टमक फंक्शनिंग, आपका लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, ये पहले से भले 1% ही सही लेकिन वो सुधरने लगेगा क्योंकि ये साइंटिफिकली सेल्स वाइज थॉट वाइज आपका अंदर तक जा रहा है। और सबसे पहला डॉक्टर जो मैं कहती हूँ कि आप खुद हैं अपनी बॉडी के, दूसरा डॉक्टर बाद में मिलने वाला है, वो देर में मिलने वाला है, वो इनडायरेक्टली काम करेगा, मैं सबसे पहले काम करूंगा।
0: कई बार जब मैं आपको सुनता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर में ऐसे बैठूं और उन चीजों को फॉलो करूं तो शायद एक नया नजरिया जो लाइफ को देखने का होता है ना वो हम सबके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया इतनी मोटिवेशनल चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: अक्टूबर आ चुका है और अक्टूबर के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर एक खुशखबरी है आप सभी के लिए, क्योंकि रेडियो पर आ चुके हैं
1: गौरव तुषार
2: रेडियो के जीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
3: और सिर्फ अक्टूबर नहीं आया, आपको पता है ना डांडिया वाला महीना भी आ चुका है। इसी महीने में हम डांडिया, गरबा, नवरात्र, इतने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं।
0: करवा चौथ भूल गया?
3: नहीं, वो हम सेलिब्रेट नहीं करने वाले ना, अभी हम लोग क्या छड़े कहते हैं,
0: छड़े या फिर बैचलर्स कह लो, शुद्ध लैंग्वेज में तो छड़े ही कहा जाता है।
3: हाँ, 30 से ऊपर वालों को तो स्पेशली।
0: हाँ, तो अपनी बात क्यों कर रहे हैं?
3: नहीं, अभी मैं हुआ नहीं हूँ।
0: स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर, गौरव हूँ मैं आप सभी के साथ, और मेरे साथ है
3: तुषार। और हम बात कर रहे थे ना डांडिया वाली, तो कहीं जा रहे हो, कुछ प्लानिंग यानिंग करी है आपने कि नहीं?
0: यार मेरी तो अभी तक कोई प्लानिंग है नहीं, बट हाँ आप सभी के लिए तुषार लेकर आया है कुछ खास।
3: देखो मैं जो लेके आया हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर अभी तक प्लान नहीं बनाया है तो 17 तारीख और 18 तारीख अपनी थोड़ी थोड़ी फ्री रख लो, क्योंकि रेडियो महारानी ने बहुत सारे ऐसे गरबा और डांडिया इवेंट से कर लिया टाई अप, जहां पर हम हैं ऑफिशियल रेडियो पार्टनर। और इसके बारे में बाकी कुछ भी डिटेल जाननी है तो हमारे सोशल मीडिया पे हम शेयर कर रहे हैं, वहीं पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि फ्री पासेस कैसे मिलेंगे।
0: और इसी के साथ साथ आप लोग रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर जरूर जाइए, रेडियो महारानी सर्च कीजिए, आपको वहीं पर मिल जाएगा सब कुछ, सारी डिटेल्स मिल जाएगी, गरबा नाइट, डांडिया नाइट। और इसी के साथ साथ मैं तो ये बोल रहा हूँ अभी से प्रैक्टिस शुरू कर लो डांस करने की, गरबा करने की, डांडिया करने की।
3: और इन्होंने जो तैयारी नहीं करी थी ना, इनके बदले की मैंने कर ली है, तो उस इवेंट में मैं या तो गौरव, कोई ना एक तो आपको जरूर मिलेगा।
0: और अगर हम ना भी मिले तो क्या हो गया, गीत है, अंजलि है, पलक है, आपको कोई ना कोई आरजे फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 जरूर मिल जाएगा।
3: हाँ जी, तो उन इवेंट्स में आइए, जोरदार ठुमके लगाते हैं गरबा में कि नहीं?
0: गरबा में डांडिया खेलते
3: गरबा में डांडिया खेलते, वाह वाह बेटी वाह।
0: डांडिया खेलेंगे। और देखो मुझे ना इस चीज की नॉलेज, मेरे को सिर्फ एक डांस का दो स्टेप पता है, जिसमें
3: वो उस बीट पे सभी को थिरकना आता है। फिलहाल अभी अपने गाने की बीट पे इनको थिरकाए।
0: बिल्कुल, मैं आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना चलाता हूँ, वापस आकर और भी ढेरों बातें करेंगे। और हाँ, अभी मैं बस इतना कहना चाहूंगा तुषार, चाय भी क्या,
3: चाय भी क्या, मसाला चाय नहीं चल रहा था अभी?
0: बिल्कुल मसाला चाय नहीं चल रहा, चलिए आप लोग गाने को एंजॉय कीजिए। हम है रेडियो के
3: जीटी,
0: यानी गौरव एंड
3: तुषार।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: गौरव तुषार रेडियो केजीपी जहां हर पल
1: फुल ऑन धमाल। बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
2: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
3: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
4: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: गाना ना बहुत कुछ याद दिलाता है, हाय नहीं आपा फिर मिलांगे। तो अभी हमने इसी वीक खोया है हमारे एक दिग्गज अभिनेता को, जिनका नाम है नाना पाटेकर, और उनका रियल नाम नाना पाटेकर नहीं है।
1: गौरव तुषार, रेडियो केजीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
0: हम लोगों ने ही नहीं पूरे विश्व ने, मैं बोलूंगा, एक बहुत ही आइकॉनिक एक्टर को खो दिया है, और उनका नाम है विश्वनाथ पाटेकर, यानी कि नाना पाटेकर। बचपन से उनको नाना नाना बुलाते थे उनके दोस्त वगैरह, एंड वहीं से उनका नाम ये प्रचलित हो गया।
2: मैं उनकी फिल्म जर्नी के अलावा बहुत सारी और जर्नी के बारे में जानता हूँ। एक तो वो बहुत ग्राउंडेड ह्यूमन थे, वो गांव में अभी भी मिट्टी से जुड़ने वाले ह्यूमन थे, प्लस उन्होंने आर्मी में भी ट्रेनिंग ली थी गन चलाना, और एक बार सिटीजन की तरह वहाँ पार्टिसिपेट भी किया उन्होंने।
0: सिटीजन की तरह नहीं, आर्मी सोल्जर की तरह पार्टिसिपेट किया। और इसी के साथ मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप सभी से, 1999 में कारगिल वॉर के दौरान उन्होंने पार्टिसिपेट किया था,
2: एग्जैक्ट,
0: एंड वहां पर 30 kg वेट लॉस हुआ था उनका, बट स्टिल
2: तो बताइए, एक एक्टर होने के साथ साथ उन्होंने हमारी कंट्री के लिए कितना कुछ किया था।
0: कंट्री के लिए भी बहुत कुछ किया था, और उसी के साथ साथ मुंबई पुलिस के लिए एक स्केच आर्टिस्ट भी रहे थे। और तुषार, मैं यहाँ तुझसे पूछना चाहूंगा, लाइक विच वन इज योर बेस्ट फिल्म?
2: फिल्म तो देखिए नाना पाटेकर साहब की बहुत सारी हैं, बट एक कुछ ऐसी मूवी होती है ना जो हमेशा आपके दिमाग में रह जाती है,
0: बिल्कुल,
2: तो उसमें मेरे को लगता है कि वेलकम।
0: हाँ, वेलकम में उन्होंने ये चीज दिखा दी थी कि मैं कितना वर्सेटाइल एक्टर हूँ। लाइक उनके मतलब कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था कि क्या ये सच में नाना पाटेकर,
2: सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका है आधा,
0: बिल्कुल। और इसी के साथ साथ उनकी फिल्म तिरंगा हो, क्रांति वीर हो, वनवास हो, या फिर नट सम्राट, बहुत सारी मूवीज है जिसमें उन्होंने बहुत ही गजब के रोल निभाए हैं। और उन्हीं में से अगर हम लोग रोल्स की बात करें तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी,
2: अभी फिलहाल शाम नहीं करते हैं, हम इनको एक गाना सुना दें।
0: बिल्कुल, रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए चला रहे हैं गाना, एंड पूरी रेडियो महारानी की टीम की तरफ से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि नाना पाटेकर को।

स्टोर्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: गौरव तुषार
1: रेडियो केजीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
4: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: गौरव तुषार रेडियो केजीटी जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
1: ये क्या नया टर्म चल रहा है सोशल मीडिया पे, विंटर आर्क। क्या ऐसे पूरा बेंड होना है पीछे, वो एक आर्क बनाना है जो पहले सिखाया जाता था, वो है विंटर आर्क?
2: नहीं, रेडियो महारानी 9.6 पर गौरव है आप सभी के साथ और मेरे साथ तुषार है और गौरव बताने वाला है कुछ विंटर आर्क।
1: हाँ, बताओ क्या होता है ये।
2: पहले ये बता, विंटर आर्क एक चैलेंज है, पहले मैं तेरे को बता देता
1: हूँ।
2: चैलेंज क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्या तू चैलेंज लेने के लिए तैयार है
1: पहले पता करना चाहिए। ऐसी नाव पे नहीं चढ़ना चाहिए जहां आगे जाके नुकसान हो सके।
2: चलिए, नुकसान तो नहीं होगा, बट हाँ, इसमें सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, फिटनेस बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। 1 जनवरी से पहले तो विंटर आर्क कहते हैं, 1 अक्टूबर से शुरू हो जाता है और उसी के साथ साथ 1 जनवरी तक जाता है, यानी कि पूरे 90 दिन का ये टाइम फ्रेम होता है जिसमें आपको एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन करना है। आपका पर्पस क्या है? आपको एक डिफरेंट लाइफस्टाइल जीनी है, आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना है, आपको डेली वर्कआउट करना है, मतलब 3 महीने के अंदर आपको टोटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है,
1: सारी वो चीजें करनी है जो मैं नहीं करता हूँ। ओवरऑल ये कहना चाह रहे हो ना?
2: हाँ, वर्किंग आउट फॉर लाइक 4 to 5 times
1: हाँ।
2: और उसके अलावा 10,000 स्टेप्स चल सकते हो, अगर
1: जरूरी नहीं है डेली जिम जाओ, बट वर्कआउट करो
2: और
1: योगा करो, मेडिटेशन करो, रनिंग करो
2: और खाना साफ सुथरा खाओ।
1: ये साफ सुथरा मतलब
2: मोमोज नहीं खाने ना?
1: ओ, मोमो नहीं खाने।
2: वैसे मेरे मन में एक सवाल आता है, वो कहते हैं कि फास्ट फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना और फ्राइड नहीं खाना। मोमोज तो यार ना फ्राइड होते हैं, स्टीम्ड होते हैं ना, तो नहीं फ्राइड वाले नहीं खाने, स्टीम वाले खा सकते हैं ना शायद,
1: पर उसके अंदर की सामग्री कितनी प्योर है ये भी तो डिपेंड करेगा।
2: ये भी डिपेंड करता है और इसी के साथ साथ इसमें ये भी बोलते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स भी होना चाहिए, यानी कि आपको अपनी स्क्रीन टाइम कम करनी है और उसी के साथ साथ थोड़ा सा माइंडफुलनेस के साथ साथ 10 से 20 मिनट या 30 मिनट आपको मेडिटेट करना है। और इसी के साथ साथ हम दोनों भी थोड़ा सा सोचेंगे विंटर आर्क के बारे में, बट उससे पहले आप सभी के लिए चलाऊंगा कुछ गाने। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 9.6 पर,
1: हम है रेडियो के जीटी।
3: इसका मतलब How are you? शायद हाँ।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

की तदी मशीन बैड बॉय ऑन द ट्रैक बेबी करे बाउंस जैसे हेटरों के चेक सर पे है क्राउन बेबी नो कैप सिक मेरी ट्रिप मेरी सिक वो कैप बच्चे बच्चे गोराटे मेरा रैप बेबी माइंड होते ब्लो जब बीट करे स्लैप

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: जिंदगी में अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो आपको धोखे खाना पड़ेगा, मतलब धोखे बादाम खाना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ कुछ कुछ धोखे भी खाने पड़ेंगे।
1: गौरव तुषार, रेडियो के जीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: एक बात ये बताओ कि अगर आपको जीवन में धोखे खाने का मौका फिर से मिले तो क्या खाना चाहोगे?
0: मैं धोखे बादाम खा लूंगा, धोखे सब्जी खा लूंगा, धोखे फ्रूट्स खा लूंगा।
2: रिलेशनशिप के धोखे की बात हो रही है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे हम लोग, वैसे पता भी नहीं चलेगा ना, धोखा खा चुके हैं।
2: अच्छा, किस टाइप की लड़की आपको लगता है आप जीवन में कभी डेट नहीं करोगे? नहीं, किस टाइप की लड़की आप जीवन में कभी डेट नहीं करोगे?
0: अगर बाय प्रोफेशन बताऊं या फिर वैसे बताऊं?
2: जैसा, जो भी, दोनों ऑप्शन आपके।
0: चलिए मैं बताता हूं, बाय प्रोफेशन मैं आई वुड नेवर डेट एयर होस्टेस।
2: ओके, क्यों?
0: उन पर टाइम नहीं होता ना। अब वो कभी इधर, कभी कहीं, कभी कहीं, फिर हम लोग बात कैसे करेंगे?
2: तो ऐसे तो लड़कियां बोलते हैं मर्चेंट नेवी वाली को नहीं करेंगे या किसी आर्मी वाले को नहीं करेंगे, वो लोग
0: उनकी अपनी मर्जी है, मैं तो अपना बता रहा हूँ ना। अब यही सवाल उड़ते हुए तेरे पास आता है
2: कि मैं किसको डेट नहीं करूंगा।
0: हाँ।
2: हर एक उस लड़की को डेट नहीं करूंगा जो मुझको बार बार ये बोले फोन, हर थोड़ी देर में फोन करके कि तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते।
0: वो तो पता कैसे चलेगा, मतलब वो तो बाद की बात है ना, स्टार्टिंग में सब अच्छे होते हैं।
2: हाँ, वो मतलब नहीं, शुरू से ऐसा है कि यार तुम फोन ही नहीं करते, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है, दीदी मैं ऑफिस गया हूँ, काम कर रहा हूँ, फिर कुछ भी हो, हर आधे घंटे बाद मैं बोल देता हूँ कई बार ना, फ्लो फ्लो में।
0: चलिए ठीक है, आधे घंटे बाद क्या आएगा?
2: आधे घंटे बाद फोन आ जाता है फिर से कि तुमने आधा घंटा हो गया कॉल नहीं किया, फिर कटता है, फिर आधे घंटे बाद आधा घंटा हो गया फोन नहीं किया।
0: और इसके ऊपर एक सबसे बढ़िया लाइन आती है, जो आती है, जो बोला जाता है, सिर्फ 5 मिनट दे दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, मगर वो 5 मिनट आपकी जिंदगी के, आपके उस दिन के 1 घंटे के बराबर होंगे।
2: ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, मुझे लग रहा है।
0: नहीं, ये गौरव बोल रहा है।
2: नहीं, गौरव का एक्सपीरियंस बोल रहा है ना।
0: चलिए, ऐसी तो बातें और भी होती रहेंगी। और हाँ, अगर मैं बोलूं लाइक, अगर देखो किसी लड़की के साथ डेट पे जाना हो तो तू कौन सी जगह पे जाना पसंद करेगा? लाइक एक कैफे, या फिर एक क्लब, या फिर माउंटेन्स पे, या फिर बीच पे, या फिर
2: ऑलवेज माउंटेन,
0: या फिर लॉन्ग ड्राइव?
2: माउंटेन।
0: माउंटेन जाने के लिए तो लॉन्ग ड्राइव करनी पड़ेगी ना।
2: नहीं, माउंटेन, और उसके बाद वहां उसको पैदल चलवाऊंगा पहाड़।
0: चलिए, आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, हमारी बातें तो ऐसी चलती रहेंगी, मगर उसी के साथ साथ गाने भी चलेंगे 89.6 पर। मैं हूं गौरव,
2: मैं हूं तुषार,
0: एंड आप सुन रहे हैं रेडियो के
2: जीटी।

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
1: कपड़े?
0: हाँ।
1: ज्वेलरी?
0: बिल्कुल।
1: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन,
0: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली स्वारी बाय इलाही बाय रितु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन, 15 अक्टूबर, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
1: द दिवाली स्वारी बाय इलाही बाय रितु, बिगर बेटर बोल्डर।

0: जरूरत हो कभी भी तो आप बोलना, आपको बताइएगा।
1: आप नहीं बता दिया तो?
2: क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो फिर हम

0: इन्फ्लुएंसर्स रोड ठीक कर रहे हैं और इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स नदियां साफ कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली वीडियो आई है फरीदाबाद से, कुछ आगे चलते ही पलवल पड़ता है। पलवल और अलीगढ़ रोड पे काफी सारे गड्ढे थे, अब इन्फ्लुएंसर्स ने उनको भी भर दिया है।
1: गौरव तुषार रेडियो केजीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: अब किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, तो यही लोग ले रहे हैं।
0: बिल्कुल, और फिर उसके बाद वो लास्ट पे ये भी तो बोल देते हैं, भाई लोग अगर हमारा काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठोक के सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।
2: नहीं, हमें लगा अगली बार से कॉन्टैक्ट हम ही को देना।
0: हो सकता है ये भी यार। हाँ, वैसे उनको ये चीज बोलना चाहिए,
2: ये अगली बार से अपना वो कर रहे हैं कि थोड़े बार कर लेंगे, देखो हमने मजबूती से बनाया, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लगा देंगे
0: और उसके बाद पैसा ही पैसा होगा।
2: अलग एक बीट निकाल लेंगे, इन्फ्लुएंसर्स कॉन्ट्रैक्टर,
0: इन्फ्लुएंसर कॉन्ट्रैक्टर। बट अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ इस चीज के बारे में। देखो, हाँ, इंसान की, एक आम आदमी की काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती हैं, बट उसकी ड्यूटी है साफ़ सफाई को मेंटेन करना, ना कि साफ़ सफाई खुद से करना। मैं यही बात अक्सर तुषार पब्लिक को बोलता हूँ अपने शो में कि मैं कूड़ा उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कूड़ा फैलाइए मत। अगर कूड़ा फैलाएंगे नहीं तो फिर इन्फ्लुएंसर्स कहाँ से आएंगे उसको उठाने के लिए? नहीं आएंगे।
2: ऑब्वियस बात है, मतलब उसको जड़ से ही खत्म कर दो ना, फैलाओगे नहीं, ज्यादा होगा नहीं, और जो लिमिटेड है उसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज काम कर रही हैं।
0: बिल्कुल कर रही हैं। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं तुझे, काफी बार ऐसा होता है, मैं बॉर्न एंड डॉटर इन फरीदाबाद हूँ और बचपन से देख रहा हूँ काफी सारी ऐसी जगह जो साफ सुथरा रहा करती थी, बट आज उधर कचरा है। अब कोई सरकारी कर्मचारी आके वहां तो कचरा डाल नहीं रहा है, ऑब्वियस बात है, हम कॉमन सिटीजन ही आके डाल रहे हैं। तो इसके लिए व्हाट डू यू थिंक एक सॉल्यूशन हो सकता है?
2: मेरे को लगता है कि हमें सबसे पहले तो ये चीज अपने माइंड में रख लेनी चाहिए। हम अक्सर ये कहते हैं ना, हमें अपने घर से कचरा बाहर कर देना है, बस घर गंदा नहीं होना चाहिए। शहर के घर से निकलते ही गेट के बाहर गंदा हो जाए, वहां कचरा रखेंगे, बट घर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये मेंटालिटी थोड़ा ब्रेक करना है। और क्योंकि एक एक जैसे अपने एरिया में कोई आप गार्बेज वो बनवा लीजिए, डंप यार्ड, वहां डंप करिए और गाड़ी वहीं से आए और वहां से लेके चली जाए, बट ये भी नहीं होता है। कई बार ऐसा बनाया जाता है और वो गायब हो जाता है कुछ दिन में।
0: और इसके अलावा मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, घर से ना पिक करने के लिए आते हैं बट लोगों के अंदर वो ये सो रहे हैं, देना भूल गए,
2: नहीं
0: तो जाके फेंक देंगे।
2: कुछ नहीं, इससे बढ़िया बताओ कोई रहता है थर्ड फ्लोर में, गाड़ी वाला नीचे, वो थर्ड फ्लोर से फेंक देता है
0: और नीचे जाके फैल गया। वो
2: फैल गया,
0: अगर फैल गया तो फिर वो जो आता है
2: वो भी नहीं उठाता, क्योंकि उनमें से दो की अलग है, वो सिर्फ कूड़ा लेने आया है, क्लीनिंग स्टाफ अलग होता है।
0: अच्छा।
2: जो झाड़ू लगाता है रोड पे वो अलग स्टाफ है, ये दो अलग लोग हैं।
0: बिल्कुल, तो ऐसे लोगों से प्लीज विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि प्लीज आप लोग समझ जाइए और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि ऐसी और भी अपडेट्स और बातें चलती रहेंगी। मैं हूं गौरव, आपके साथ, मेरे साथ है
2: तुषार।

0: गौरव तुषार रेडियो केजीपी जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
1: ये भाई दर देख के चलो।
2: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
2: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
3: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: ये वाला हफ्ता कुछ ज्यादा ही जल्दी चला गया, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तो भूकंप आया था मंगलवार की रात को।
1: गौरव तुषार रेडियो केजीटी, जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
2: कौन आ पता है इस बारे में कद आया? मिक्स कर दिया ना
0: तू, रहने दे तू, रहने
2: मैंने मिक्स कर दिया ना,
0: बहुत ज्यादा मिक्स कर
2: दिया। किस किस को, भाषा को मिक्स कर दिया?
0: कद आया सी,
2: हां आसपास के स्टेट है ना, चल जाएगा,
0: चल जाएगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। भूकंप की बात कर रहे थे, इसको पता ही नहीं, सच में नहीं पता था, रहा
2: नहीं पता भाई।
0: मंगलवार की रात को आया था भूकंप, और चमोली था इसका उत्तराखंड, चमोली उत्तराखंड इसका सेंटर वो था पॉइंट, और 4 समथिंग रिक्टर स्केल का ये भूकंप आया था। दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस हुए थे, रात के टाइम पे आया था, सबसे बड़ी बात।
2: तो मैं सो रहा हूँ चादर डाल के बढ़िया एसी की मीठी मीठी हवा में,
0: 10:30
2: मैं कई बार सो जाता हूँ।
0: तो मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, देखो ये एक क्या कहते हैं इसे, प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, आपदा तो नहीं है, अच्छी नहीं। बात है, बट एक
2: अलर्ट बोल दीजिए,
0: हाँ मतलब एक नेचर है,
2: नेचुरल अलर्ट है,
0: नेचुरल अलर्ट है, और ये नेचुरल चीज है तो हम इसको रोक नहीं सकते। बट काफी बार ना लोग कहते हैं कि हम लोगों ने प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि उसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। क्या पहले नहीं होती थी? पहले भी तो होती थी।
2: तो एरिया एरिया पे डिपेंड करता है, पहले इस एरिया तक नहीं आते थे, वो सिर्फ माउंटेन एरिया तक होके चले जाते थे, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स तब वहाँ की ही सिर्फ वो होती थी, बट अब हीट की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से वो टेक्टोनिक प्लेट्स में भी चेंज आ गए।
0: तो तुषार अब सिर्फ रेडियो का जॉकी नहीं रहा, अब वो आर्कियोलॉजिस्ट भी बन चुका
2: है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी चलती है इस पर।
0: ज्योग्राफी पढ़ी है तूने?
2: हाँ।
0: चलिए, आर्ट्स का भी स्टूडेंट बन गया, आर्ट्स का भी टीचर बन चुका है। और इसी के साथ साथ अगर मैं भूकंप की बात करूं, तो मैं एक चीज आप सभी से बोलना चाहता हूं, देखो भूकंप जब आता है ना, तब ये मत सोचा करो कि भूकंप आ रहा है, चलो फोन करके पूछ, अरे फोन करने का टाइम नहीं, भागो उस टाइम।
2: भागना नहीं होता भूकंप में,
0: फिर क्या करना होता
2: है? आराम से जाना था, भागते हुए कई बार आप गिर गए, आपके ऊपर कुछ इधर उधर और गिर जाए, तो आराम से अपनी प्लेस से निकल के जाइए, भगदड़ नहीं मचाना।
0: मैं सबसे बड़ी बात बोलूं, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हो तब तो आप नहीं भाग सकते, तब तो आपको सिर्फ अपने आप को बचाना है, जैसे कि दरवाजे के नीचे खड़े हो जाओ कहते हैं, और अपने ऊपर टेबल के नीचे बैठ जाओ, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो इन सब चीजों को फॉलो कीजिए, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। वापस आकर और भी ढेरों बातें होनी है। मैं हूं गौरव,
2: मैं हूं तुषार,
0: एंड आप सुन रहे हैं रेडियो के जी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: Oh, so-

0: गौरव तुषार रेडियो केजीटी जहां
1: हर पल फुल ऑन धमाल। वर्ल्ड में बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं और उन्हीं में से मैचेस हो रहे हैं चैंपियंस के, मैं बोलूंगा लेजेंड्स के, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स चल रहा है जहां पर टीम इंडिया भी पार्टिसिपेट कर चुकी है। बहुत सारी टीम्स है बट इंडिया दो मैचों में से एक मैच जीत चुकी है।
2: ये थर्ड एडिशन है, ये कौन बताएगा?
1: थर्ड एडिशन तू भी तो तू क्या करेगा?
2: नहीं नहीं, आप बीच में ऐसे बताने लगे तो मैंने कहा फ्लो में मैं चूकू नहीं। और आपको पता है मेरे फेवरेट प्लेयर्स भी इसमें बहुत सारे खेल रहे हैं,
1: जैसे कि
2: युवराज सिंह
1: और अंबती रायडू,
2: इरफान पठान,
1: यूसुफ पठान।
2: अच्छा ये क्या वो कर रहे हो?
1: हाँ, दोनों।
2: तो शिखर धवन भी खेल रहा है?
1: शिखर धवन भी खेला, बट शिखर धवन ने अभी तक बैटिंग नहीं करी है, एक मैच में शायद आई गेस।
2: नहीं तो खेल तो रहे हैं ना?
1: खेल रहे हैं। और इसके अलावा एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका मुझे उम्मीद नहीं थी।
2: कौन?
1: ऋषि धवन।
2: वाह, एक और खिलाड़ी बताओ। सुरेश रैना।
1: सुरेश रैना भी है इसमें और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। और मैं अगर सबकी बात करूं तो मेरे सबसे फेवरेट जिनका तुमने नाम ले लिया है युवराज सिंह। तो यहाँ पर युवराज सिंह की ना बैटिंग देखने में बड़ा मजा आया मुझे। और इसके अलावा मैं एक और बात बोलूंगा,
2: एक बॉलर भी है बहुत बढ़िया,
1: हरभजन सिंह।
2: यस।
1: और इसके अलावा एक और बॉलर है।
2: कौन?
1: जो मतलब मैं उनसे अच्छी बॉल डाल सकता हूँ, वैसे मजाक नहीं कर रहा बट सच डाल सकता हूँ, पीयूष शर्मा।
2: ओ
1: यस, राइट आर्म बट्टा स्पिन।
2: आई सी
1: बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं, जब आप लोग इन मैचेस को देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि आपके जो चैंपियंस थे वो अब कितने ज्यादा मतलब एजेड हो चुके हैं। और यहाँ इस तुषार को अभी नींद आ रही है सुबह सुबह, पता नहीं क्यों।
2: वो जल्दी उठा देते हो ना? यही दिन मिलते हैं।
1: खैर, आप लोग ये सारे मैचेस देख सकते हैं, वीकेंड वाले मैचेस भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ फाइनल कब होने जा रहा है? मुझे लगता है फाइनल में इंडिया जरूर पहुंचेगी। और फाइनल होने जा रहा है आज से बस

0: कुछ ही दिन बाद यानी कि अगले संडे को ये मैच होने जा रहा है 18 अक्टूबर को। कौन खेलेगा फाइनल वो सेमीफाइनल बताएगा, और सेमीफाइनल है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को ही।
1: एक सवाल,
0: बिल्कुल,
1: इस लीग में जब हम बाकी लेजेंड्स को क्यों नहीं खिला सकते,
0: जैसे कि
1: सचिन तेंदुलकर, जैसे कि एमएस धोनी, जैसे कि सौरभ गांगुली,
0: वो खेल नहीं रहे होंगे ना अपनी मर्जी से,
1: मतलब कर सकते हैं ना कंसीडर,
0: बिल्कुल कर सकते हैं कंसीडर, बट अभी ये सवाल छोड़ देते हैं हम लोग और अभी आके गाने पे कंसंट्रेट करते हैं। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूं गौरव,
1: मैं हूं तुषार,
0: एंड आप सुन रहे हैं रेडियो के
1: जी डी।

0: गौरव तुषार रेडियो केजीपी जहां हर पल फुल ऑन धमाल।
1: भाई सोशल मीडिया ये क्या नई नई चीजें लेके आ जाते हो तुम। अभी तुमने बीच में कुछ और बोला, अब बोले हो ये अक्टूबर थ्योरी नामक एक चीज होती है कि अक्टूबर के महीने में ये चीजें बढ़ जाती हैं।
2: तूने विंटर आग के बारे में बोला, मैंने वो बता दिया। अब अक्टूबर थ्योरी क्या चीज है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं।
1: मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर थ्योरी ये कहते हैं कि आप जो यूनिवर्स से बहुत टाइम से चीजें मांग रहे थे वो चीजें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं अक्टूबर के महीने में, क्योंकि मौसम बदल रहे होते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे होते हैं,
2: नवरात्रे होते हैं,
1: हाँ बहुत सारी चीजें। तो आप जो जो मांग रहे होते हैं वो धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाता है, और जो चीज आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है वो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक जाना भी शुरू हो जाती है। लाइक आपकी कोई गर्लफ्रेंड है बट वो आपके लिए बेटर नहीं है, तो वो धीरे धीरे आपको छोड़ के चली जाएगी। और कोई लड़की ऐसी है जिसे आप बहुत टाइम से इमेजिन कर रहे हो या बहुत टाइम से वो आपके बारे में सोच रहे हो, तो धीरे धीरे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना या बातें होना आपके बीच में शुरू हो जाएगा।
2: ऐसा वैसे होता है, ये बात तो बिल्कुल सही बोली। लास्ट ईयर की बात है, मैंने सोचा था कि मैं वापस से रेडियो महारानी से थ्रू लोगों से जुड़ूंगा, हाँ। फिर आ गया था
1: तो वही कह रहा हूँ। तो अक्टूबर एक वैसा महीना होता है जहाँ लाइफ में जो भी आप कर रहे हो बाकी महीनों में वो चेंज होने लगता है, उसके सिनेरियोस चेंज होने लगते हैं, धीरे धीरे चीजें बेटर एक ट्रैक पे आने लगती हैं। और मुझे लगता है ये विंटर एफर्ट भी इफेक्ट होता है बेसिकली,
2: विंटर एफर्ट,
1: क्योंकि सर्दियों में मुझे लगता है चीजें वैसे भी बहुत स्मूथ हो जाती है गर्मियों के मुकाबले।
2: सर्दियों में रातें बड़ी होती है ना, इसलिए हम लोग मतलब रातों में सोचते हैं। और एक और चीज मैं बोलूंगा, मैंने पिछले कुछ दिन पहले अपने रेडियो में अपने शो में बोला था, कभी भी, एक ही ब्रूस ली की लाइन है मैंने सुनी थी तो मैंने सोचा इसको क्यों ना पब्लिक तक पहुंचाया जाए, कभी भी अपने बारे में गलत मत बोलो, भले ही मजाक में भी हो तब भी मत बोलो, कभी भी मत बोलो कि मैं ये हूं मैं वो हूं, हमेशा बोलो अच्छी अच्छी चीजें। मेरे से कोई पूछता है कि कैसा है, मैं बोलता हूं हैंडसम हूं, रिच हूं।
1: एक और इसी का बेस्ट एग्जांपल देता हूं, वो भी मैंने एक रियलिटी शो देखा, उसमें एक कंटेस्टेंट आए, वो बिहार से बिलोंग करते थे, भोजी पॉप उनका फ्लेवर है गाने का। उन्होंने बताया स्टेज पे क्या बोला, मैं बिहार का सीएम हूं।
2: अरे वाह।
1: तो उन्होंने बोला आप बिहार के सीएम है कैसे, कह रहे मैं आज ये बोलूंगा तब तो बनूंगा फ्यूचर में जाके, इसलिए वो अभी से बोल रहा है मैं बिहार का सीएम हूँ।
2: तो ये होता है मैनिफेस्टेशन, और इसी के साथ साथ हम भी मैनिफेस्ट करेंगे कि हाँ अक्टूबर हम लोगों का भी अच्छा जाए और आपका भी अच्छा जाए। और इसी के साथ साथ
1: अभी फिलहाल हम यहाँ से जाए,
2: बिल्कुल लेते हैं इजाजत, मिलेंगे आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 9 मैं मिलूंगा, और उसके अलावा
1: और मैं मिल जाऊंगा 11 से 2 बजे तक।
2: तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। दिस इज आरजे गौरव एंड
1: दिस इज आरजे तुषार
2: साइनिंग ऑफ।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

गाना है फ्रॉम द मूवी अग्निपथ और इसी गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड। मैं गीत हूँ और आज मैं आपको बिजनेस अनप्लग्ड में कहानी सुनाने वाली हूँ। एक ऐसे दौर की कहानी जब इंडिया का रोजमर्रा का खाना बहुत सिंपल था लेकिन चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी। हमें जाना होगा इसके लिए लगभग 90 से 100 साल पीछे, उस इंडिया में जो ब्रिटिश रूल के नीचे था, उस टाइम पे जहां सुबह की चाय होती थी लेकिन साथ में जो चीज अंग्रेज खा रहे थे वो आम इंडियंस के लिए एक क्लोज्ड दुनिया थी। वो चीज एक बॉक्स में आती थी, बॉक्स का नाम होता था हंटले एंड पामर्स। ये बॉक्स बड़ी बड़ी स्टोर से निकलता, सीधा अंग्रेज ऑफिसर्स के घर जाता, उनके बंगलोज, उनके क्लब्स और उनके महलों तक, और सुबह की चाय के साथ वो खाया जाता और इंडियंस बस देखते रह जाते। उन्हें पता ही नहीं होता था कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, टेस्ट कैसा है और ये चीज कुछ लोगों के लिए है। उस वक्त वो चीज खाना नहीं थी, वो स्टेटस सिंबल थी जो अंग्रेज खा रहे थे और हम नहीं। और यहीं पर ये कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इसी गैप को सबसे पहले नोटिस किया एक इंडियन ने। नाम था लाला राधा किशन, जिन्हें कई जगह लाला राधा मोहन भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार ये सोचा कि जो चीज अंग्रेज रोज यूज कर रहे हैं वो इंडियन घरों तक क्यों पहुंच नहीं सकती। सोचो जरा, जब मार्केट ही नहीं है, लोगों को प्रोडक्ट का आइडिया ही नहीं और ब्रिटिश ब्रांड्स का पूरा कंट्रोल है, उस टाइम पे इस तरह सोचना कितना बड़ा रिस्क होगा। लोग हंस रहे थे, मार्केट रेडी नहीं थी और ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे मुश्किल काम था। पर यहाँ ये कहानी रुकती नहीं है, ये सिर्फ एक सोच थी, असली एक्सपेरिमेंट अभी शुरू होना बाकी था और इसी एक्सपेरिमेंट से आगे चलकर एक ऐसी चीज जन्म लेगी जो डिकेड्स के बाद भी हर मिडिल क्लास घर का हिस्सा बन जाएगी। पर कैसे, ये जानेंगे हम इस गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

Once again, welcome back. You are listening to Business Unplugged. मैं आपके साथ गीत हूँ और जो इमोशन की मैं बात कर रही थी ना, ये है बिस्किट. चाय कंप्लीट करता है. जिस बिस्किट के बिना शाम थोड़ी अधूरी लगती है. एक टाइम था जब वो सिर्फ अंग्रेजों की प्लेट तक सीमित था. उस वक्त इंडिया में बिस्किट का मतलब था फॉरेन बॉक्स, फॉरेन टेस्ट और फॉरेन कंट्रोल. इंडियन बिस्किट्स को जानते भी नहीं थे. फिर इसी बीच एक इंडियन के माइंड ने पहली बार सोचा, हम भी क्यों नहीं. नाम था लाला राधा किशन. इन्होंने सबसे पहले एक देसी बिस्किट बनाने की कोशिश की. इस बिस्किट का नाम था द हिंदू बिस्किट. ये दिल्ली में लगभग 1898 के आसपास की बात है. आइडिया स्ट्रॉन्ग था, इंटेंट ऑनेस्ट था, पर टाइम टफ था. मार्केट रेडी नहीं थी. लोग बिस्किट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स आते गए. फॉरेन ब्रांड ज्यादा पावरफुल थे, डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में था और रिजल्ट द हिंदू बिस्किट ज्यादा दूर तक नहीं चल पाया. पर कहानी यही खत्म नहीं होती. कभी कभी एक फेलियर सिर्फ पॉज होता है, एंड नहीं. फिर आया एक बड़ा मोमेंट, स्वदेशी मूवमेंट. महात्मा गांधी ने जब 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी का नारा दिया तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बदली, माइंडसेट बदलने लगा. लोग सोचने लगे, जो हम रोज यूज करते हैं क्या वो हम खुद नहीं बना सकते. और ये सोच सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही. ये सोच गुजरात तक पहुंची और गुजरात में एक टेलर तक. एक सिंपल सा आदमी रोज सिलाई करता था, कपड़ों से घर चलाता था. पर स्वदेशी के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अंग्रेज बिस्किट बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं. उस टेलर का नाम था मोहनलाल दयाल. इन्होंने सपना नहीं देखा, इन्होंने पॉसिबिलिटी देखी. और वहीं से इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है. एक टेलर, एक बिस्किट और एक देसी ड्रीम. कैसे आगे बढ़ती है ये कहानी, कैसे एक छोटी सोच एक बड़ी हैबिट बन जाएगी, जानेंगे हम थोड़ी देर बाद. पहले सुनते हैं गाना. गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, सपने, एम्बिशन सब मांगे, उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज, योर अकाउंट इज इन डेंजर, योर पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

बिल्कुल, हम सफर में हैं और गाना है फ्रॉम द मूवी जब हैरी मेट सेजल, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है बिजनेस अनप्लग्ड। हम बात कर रहे हैं एक बिस्किट की, नाम है पार्ले जी। साल था 1900। गुजरात के वालसाड से एक 12 साल का लड़का मुंबई की तरफ निकल पड़ता है। ना कोई सूटकेस, ना कोई बैकअप प्लान, बस एक चीज थी, काम सीखना है, जिंदा रहना है। मुंबई में इस लड़के ने सिलाई सीखी। कपड़ों के बीच सुई धागे के साथ रोज का दिन निकालता रहा। सिलाई सीखने के बाद कुछ दिन दूसरों की दुकानों पर काम किया, ऑब्जर्व किया, सीखा और चुपचाप ग्रो करता गया। 6 साल बाद जब वो लड़का 18 साल का हुआ तो मुंबई के गांव देवी एरिया में उसने अपनी छोटी सी दुकान खोली और यहीं से इसकी जिंदगी ने स्पीड पकड़नी शुरू की। वो सिर्फ टेलर नहीं रहा, वो बिजनेस समझने लगा। कुछ ही सालों में इन्होंने 2 कंपनीज खड़ी कर दी थी और धीरे धीरे वो लड़का मुंबई के सिल्क मार्केट में एक पहचान बन गया। नाम था मोहन लाल दयाल। सिल्क का काम चल रहा था पर दुनिया बदल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, मार्केट से ले सप्लाई रुक गई और तब मोहनलाल दयाल ने एक बड़ा डिसीजन लिया, सिल्क बिजनेस बंद। वो अपने 5 बेटों के साथ एक नया रास्ता सोचने लगे और इसी बीच स्वदेशी मूवमेंट दिल और दिमाग दोनों में था। इन्होंने सोचा बिस्किट सिर्फ अंग्रेज खा रहे हैं, इम्पोर्टेड, महंगे, आम आदमी से दूर। मोहनलाल दयाल ने सोचा अगर खाना है तो सबके लिए होना चाहिए ना। 1928 में इन्होंने एक कन्फेक्शनरी कंपनी शुरू की, नाम रखा गया हाउस ऑफ पार्ले। सीखने के लिए जर्मनी चले जाते हैं, वहाँ कन्फेक्शनरी बनाना सीखते हैं। 1929 में 60,000 रुपए की मशीन खरीद कर इंडिया लौट आए, फैक्ट्री शुरू की, पहली बनी ऑरेंज कैंडी। और फिर 1939 में मोमेंट आया जब बिस्कुट बनाना शुरू हो गया। उस वक्त मार्केट पर ब्रिटिश ब्रांड्स का राज था, ब्रिटानिया, हंटले एंड पामर्स, यूनाइटेड बिस्किट्स। पर पार्ले ने एक अलग बात सोची, सस्ता, देसी, हर किसी के लिए। इंडिया में बना, इंडियन लोगों के लिए बना और बस यहीं से एक बिस्किट आदत बन गया। जो अंग्रेजों की टेबल से निकला वो इंडियन चाय के साथ घर घर पहुंच गया। और ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, इमोशन था, यही था पार्ले का असली बेस। और आगे की कहानी गाने के बाद। फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ पार्ले जी के सफर की। पार्ले का सफर शुरू हुआ एक स्मॉल स्केल से, एक टेलर के विजन से जो सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए कुछ टेस्टी और अफोर्डेबल क्रिएट करना चाहता था। 1929 में शुरू हुई फैक्ट्री में पहली चीज बनी ऑरेंज कैंडी बच्चों के लिए, घर घर के लिए सिंपल स्वीट। पर 1939 में बिस्किट बनना स्टार्ट हो गया, मार्केट टफ थी, ब्रिटिश ब्रांड डोमिनेट कर रहे थे, ब्रिटानिया, हंटले एंड पामर्स, यूनाइटेड बिस्किट्स। पर पार्ले ने सोचा हर इंडियन के लिए एक देसी बिस्किट, और इसी सोच के साथ पार्ले जी का फाउंडेशन बना। एनर्जी रिच, पॉकेट फ्रेंडली और इजी टू ईट, लोगों ने इसे तुरंत अपनाया। 1950 से 1960 में पार्ले ने स्नैक्स और कैंडीज एक्सपेंड किए, मोनाको, किसमी, पॉपिंस, हर प्रोडक्ट सिंपल, टेस्टी और अफोर्डेबल। और 1980 ये वो वक्त था जहां पार्ले ग्लू को ऑफिशियली बना, यानी कि पार्ले जी, जी का मतलब था ग्लूकोज, एनर्जी का सिंबल। बचपन से लेकर एडल्ट तक हर कोई इस बिस्किट को पसंद करने लगा और मार्केटिंग भी काफी इनोवेटिव थी। शक्तिमान, छोटी बच्ची का एड, सिंपल और मेमोरेबल, हर घर में पार्ले जी, हर चाय के साथ एक हैबिट बन गई। आगे 1990 से 2000 में चॉकलेट, नमकीन, स्नैक्स और ग्लोबल एक्सपेंशन, अफ्रीका, मेक्सिको। पार्ले ने बस इंडिया तक सीमित रहने से मना कर दिया। पार्ले जी सिर्फ बिस्किट नहीं था, ये इमोशन, कम्फर्ट और एक आदत भी बन गया था। हर लॉकडाउन, हर स्ट्रीट, हर ट्रेन जर्नी में ये बिस्किट साथ था। और सोचो, ये सब एक टेलर का सिंपल आइडिया था, एक सोच से, एक विजन से हर इंडियन को अपना बिस्किट मिले। ये कहानी सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं है, एक ड्रीम और देशभक्ति की भी है। स्मॉल बिगनिंग्स, जायंट इम्पैक्ट। और अभी यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

मूवी रंग दे बसंती और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ पार्ले जी की कहानी के बारे में। पार्ले जी सिर्फ टेस्ट और क्वालिटी के लिए फेमस नहीं था, ये हर इंडियन के लिए एसेसिबल बनने के लिए फेमस था। छोटे बजट वाले घर, स्कूल बच्चे, स्ट्रीट वेंडर सबके लिए बिस्किट अफोर्डेबल था और यही डेलिबरेट स्ट्रेटेजी थी मोहनलाल दयाल की। बिस्किट को महंगा बनाने से फायदा नहीं है बॉस, सबको खाना मिले तभी इम्पैक्ट और लॉयल्टी बनती है और इसीलिए पार्ले जी ने बहुत लंबे ड्यूरेशन तक प्राइस मेंटेन किया। रिजल्ट, हर इंडियन की चाय का कंपेनियन बन गया, हर ट्रेन जर्नी, हर स्कूल लंच, हर टी स्टॉल के साथ। और इसी अफोर्डेबिलिटी और एसेसिबिलिटी ने पार्ले जी को एक नेशनल हैबिट और एक इमोशन से कनेक्ट कर दिया। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

वैसे जब पूरी कोशिश की जाती है तो जीतना मुमकिन हो जाता है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही थी पार्ले जी के सफर की। पार्ले जी का सफर सिर्फ एक बिस्किट बनाने तक सीमित नहीं था, ये कहानी है विजन और स्ट्रगल की। सोचिए, एक 12 साल का लड़का गुजरात से मुंबई आता है सिर्फ सिलाई सीखने, जिंदा रहने के लिए, और वही लड़का मोहनलाल दयाल इंडिया के लिए एक ब्रांड खड़ा करता है जो आज भी हर घर, हर चाय, हर स्कूल लंच का पार्ट है। इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, इन्होंने एक आइडिया को कल्चर में कन्वर्ट किया, अफोर्डेबल, एसेसिबल और देशभक्ति से इंस्पायर्ड। और ये तीन पिलर्स ही पार्ले जी को दुनिया भर में फेमस बनाते हैं। और ये भी याद रखिए, ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये कहानी फेलियर, एक्सपेरिमेंट और पेशेंस की है। पहली कैंडीज फेल हुई, पहला बिस्किट फ्लॉप हुआ और फिर भी विजन का पीछा नहीं छोड़ा। और इसी वजह से पार्ले जी का मैजिक है हर जनरेशन के साथ कनेक्ट करना, हर इंडियन के लिए फैमिलियर रहना और एक सिंपल स्वीट हैबिट बन जाना। तो अगली बार जब भी आप पार्ले जी के साथ चाय पिए या ट्रेन जर्नी में बिस्किट खाएं, तो अपने बचपन को याद करो और सोचो एक छोटा टेलर, एक ड्रीम और एक देशभक्ति का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। ये था सफर 12 साल के लड़के का, एक देसी बिस्किट ब्रांड का, एक इंडियन ड्रीम का और एक ग्लोबल इंस्पिरेशन का। आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड और मेरा वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आप सुनते रहो रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ कर दिल में लगा, जो कहती है कर के दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: get ready Faridabad, because for the first time in your area, the beats of Dandiya, DJ or Dhol are coming together for an unforgettable night.
1: Glorix Entertainment present Glorix Garba Night, 17 अक्टूबर शाम 6 बजे से.
0: वेन्यू पार्टनर इमेंस रेजिडेंसी होटल, सेक्टर 28 फरीदाबाद. रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6 एफएम.
1: सपोर्टिंग पार्टनर्स आर्ट ऑफ लिविंग फरीदाबाद, स्टूडियो 1 डांस एंड फिटनेस.
0: राइट पार्टनर वोक वुमेन ऑक्यूपाइड कार्स. स्पोर्ट पार्टनर नॉट आउट. हेल्थ पार्टनर अजयवेदा. सिक्योरिटी पार्टनर बिग पैंथर.
1: डीजे ढोल डांडिया नॉनस्टॉप गरबा. सो गैदर योर फ्रेंड्स फैमिली एंड योर गरबा गैंग,
0: क्योंकि 17 अक्टूबर की रात होने वाली है फुल ऑन गरबा नाइट.
2: झमा झम नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, नॉनस्टॉप हल्ला मचेगा.
1: टिकट्स अवेलेबल हैं ऑल इवेंट्स की साइट पे, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9311304040 पर.
0: ग्लोरिक्स गरबा नाइट 2026. इस बार फरीदाबाद में गरबा का रंग, डीजे की बीट और ढोल का धमाल, सब एक साथ.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे

0: जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।
2: उनकी जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।
3: Oh my God! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
4: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
5: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो ये मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: खिलाना।
1: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
2: कपड़े?
1: हाँ।
2: ज्वेलरी?
1: बिल्कुल।
2: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
1: सब कुछ। क्योंकि आ रहा है द दिवाली स्वारी बाय इलाही बाय ऋतु, 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन, 15 अक्टूबर, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
2: द दिवाली स्वारी बाय इलाही बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।

0: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
1: नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को लाते हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर जो ट्रांसप्लांट से किसी तरह से जुड़े हैं, जो अपने आप में एक हीरो हैं। उसी की तरह आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनका नाम है विमल शर्मा और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट 2019 में हुआ था। दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में एक खास बात बता दूं कि जिंदा दिल्ली का नाम है विमल शर्मा। अब ये पेशेंट नहीं है, ये पेशेंट पहले थे आफ्टर ट्रांसप्लांट, जो अपने आप में एक विलिंग पावर इन्होंने दिखाई है और अपने आप को रिकवर किया है। उससे अब मैं तो इन्हें पेशेंट नहीं बोल सकता और वो खुद भी पेशेंट बोलना खुद को पसंद नहीं करते बुलवाना। विमल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: विमल जी, जैसा कि मैंने बताया कि आप बहुत जिंदा दिल इंसान है, तो मैं बस एक बार हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट है, इसकी नौबत कैसे आ गई? मतलब अगर आप पहले भी ऐसे ही थे तो ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, एकदम सडनली कैसे आई और देन कैसे यहाँ पहुँच गई?
2: बिल्कुल सौरभ जी, मैं विस्तार पूर्वक आपको बताता हूँ। एक तो मैं आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे को बड़ा महान बना दिया और ये आपने जो बात कही है वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं अपने आप को ग्रेट समझता हूँ। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि वाकई में मैं जो जिया हूँ या जी रहा हूँ, जिंदा दिली से जी रहा हूँ। नंबर एक, ये मेरी जो प्रॉब्लम सौरभ जी हुई है, ये शुरू हुई 2018 से
1: जी।
2: तो ये मेरी बीमारी का नाम ILD बताया गया क्योंकि मेरे को सांस की दिक्कत शुरू हुई, तो मैंने अपनी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया, ठीक है ना। तो वहां से मुझे ये कहा गया कि ILD है, इससे क्या है कि आपके जो लंग्स हैं वो स्क्वीज हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जो अंदर के लंग्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे, इतने हार्ड हो जाएंगे कि पत्थर जैसे हो जाएंगे। अब आप साथियों, आप एक अंदाजा लगा लो, कहां रबड़ कहां पत्थर। तो पंपिंग जो है वो डेड हो जाएगी, इसलिए बोझ लगेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने बहुत कोशिश की, इधर गए उधर गए, उस हॉस्पिटल गए, हर जगह घूमे। मुझे ऑक्सीजन लग गई थी, ऑक्सीजन इसलिए लग गई थी कि मेरी खुद की ऑक्सीजन जो जनरेट हो रही थी वो पूरी नहीं हो रही।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि ऑक्सीजन का जो फेफड़ों का काम है वो हेड से लेके अंगूठे तक पैर के हर जगह उसने अपनी ऑक्सीजन देनी है। ओके,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये मेरे साथ शुरू हुई थी।
1: बिल्कुल विमल जी, मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो ILD डिसीज का आपने नाम लिया, इसका फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। इसमें होता क्या है, जो आपकी लंग्स की स्पॉन्जीनेस है धीरे धीरे खत्म हो जाती है और फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स टिश्यूज में, ताकि जो आपकी सांस लेने की क्षमता है जिसमें लंग्स फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, वो क्षमता बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण आप कम ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो धीरे धीरे कम ऑक्सीजन के कारण आपके जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसमें आपको थकान महसूस होने लगती है, आप सांस की कमी महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे आप चल भी नहीं पाते। तो इतनी भयावह बीमारी है ये। विमल जी, आपने बताया कि 2018 में शुरू हुई थी, उसके बाद
2: घूम घाम के 3-4 हॉस्पिटल गए, तो सबने मेडिसिन पे मेरे को रखा। हमने बड़ा पूछा कि इसकी रेमेडी क्या है, बोला जी आपको ऑक्सीजन पे जिंदा रहना पड़ेगा और साथ के साथ मेडिसिन खानी पड़ेगी। और हम आपस में बैठे थे घर वाले कि यार अगर ऑक्सीजन पे जिंदा रहना है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम तो मैं तो जिंदगी भर डिपेंड हो गया। हार के एक आशा की किरण दिखी मुझे, जो कि मेरी बेटी के द्वारा बताई गई, बिकॉज मेरी बेटी है एक अमेरिकन कंपनी के अंदर, उसका नाम है बोस्टन साइंटिफिक। मेरी बेटी ने बोस्टन साइंटिफिक पे बात की, बिकॉज वो एक अमेरिकन कंपनी है, वो ह्यूमन बॉडी के सारे डिवाइसेस बनाती है
1: जी, पेसमेकर वगैरह
2: जो भी डिवाइसेस लगने हैं, कुछ भी लगना है तो वो अमेरिकन कंपनी है, गुड़गामा में वो बनाती है। तो वहाँ बड़े प्रोफेशनल हाई लेवल के डॉक्टर्स बैठे होते हैं, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि विमल जी को जो नोएडा के अंदर मेट्रो हॉस्पिटल है वहाँ के द बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट इन इंडिया डॉक्टर दीपक तलवार है, आप उनसे मिलिए। तो हम उनके पास गए अपॉइंटमेंट लेके। फर्दर आप कुछ पूछना चाहती हैं, मैं फिर आगे बताऊं
1: जी। बिल्कुल विमल जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे।
3: हो गया

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिस्से

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: साथियों इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से आप सामने हाजिर हैं। हम बात कर रहे हैं विमल जी से। विमल जी अपने ट्रांसप्लांट की जर्नी की स्टोरी बता रहे हैं। तो विमल जी आप हमें ये बताइए कि जब आप चेन्नई चले गए तो चेन्नई में आपने जब हॉस्पिटल में दिखाया उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करना पड़ा होगा।

0: तो करीब कितने दिन तक या कितने महीने तक आपको अपने लंग्स मिलने तक का वेट करना पड़ा?
1: हाँ साथियों, मैं एक और चीज आपको बता दूं सौरभ जी, मेरे अंदर ना कभी कोई डर नहीं आया। जैसे होता ना कि मुझे कहा गया कि आपकी लाइफ छोटी है, तो मैंने कहा जितनी लाइफ लिखी है जिंदगी उतनी है, छोटी है बड़ी है, एक चिंता हो जाएगी भाई मैं क्या करूंगा, ना नथिंग, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा दाता मेरा ऊपर है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरी सपोर्ट है, सबकी विशेज है, और ये मैं मैच को जीतूंगा ही, मैं मैच जीतने के लिए ही आया हूँ, हारने के लिए नहीं। ओके, मेरी वैल्यूएशन हुई, हम गए थे लंग्स ट्रांसप्लांट कराने, लेकिन वैल्यूएशन के अंदर आया कि लंग्स की वजह से मेरा हार्ट की आर्टरी भी डैमेज्ड है। तो हमारे को डॉक्टरों ने बुलाया कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, हमारे को काउंसलिंग की कि भैया ऐसा है विमल जी, आप सबको हम बता दें, अगर आपका हम लंग्स ट्रांसप्लांट करेंगे किसी यंग आदमी का, और वो हार्ट आपका वो झेल नहीं पाएगा, हार्ट की आर्टरीज आपकी जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, तो हम चाहेंगे आप हार्ट और लंग्स इकट्ठे लगवाएं।
0: मतलब आप लंग ट्रांसप्लांट करवाने गए थे, लेकिन एडिशनली आपको हार्ट ट्रांसप्लांट भी करवाने की सजेशन डॉक्टर्स के द्वारा दी गई।
1: हाँ, तो वो उन्होंने जो हमारे को दी, तो हमने हंसते हंसते ये कहा, डॉक्टर साहब आप हमारे लिए गॉड हो, आप बेस्ट हो, जो आप करोगे आप साइन करवाओ, आप अपना काम करो
0: जी।
1: तो आप ये देखो इतनी बड़ा डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना, ऑन द स्पॉट, ये भी एक उसको कहते हैं ना जिंदा दिली है, दिलेरी है। और मेरे में क्या कॉन्फिडेंस था, जब कॉन्फिडेंस था यार मैं तो ठीक होने के लिए आया हूँ, तो मैं ठीक हो गया। मेरा वहां शर्मा जी सबसे बड़ा क्या था कि वहां फिर हमारा नाम रजिस्टर्ड हुआ, और रजिस्टर्ड वही करवाते हैं हॉस्पिटल वाले जो उनकी एक

0: के अनुसार अगर अंग आपको मिलते हैं तो आपका अगर 100 नंबर है तो पहला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहला है तो हो सकता है 100 नंबर पे आ जाए।
1: तो करीब कितने कितने महीने आपको वेट करना पड़ा लंग्स के लिए?
0: 3 महीने बाद उन्होंने कहा कि भी आपका वो बी रेडी आफ्टर 3 मंथ्स कि हमारे को किसी डोनर के मिले हैं। बट आफ्टर उनका थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर फोन आ गया कि नहीं, आप अपना खाना खाइए, पानी पीजिए, जो डोनर आया था उसके डोनर जो इन्फेक्टेड

0: कुछ घंटों के अंदर अंदर उनको ट्रांसप्लांट करना जरूरी हो जाता है, वरना वो खराब हो जाते हैं।
1: जी
0: तो विमल जी, ऐसे समय में जब आपको 9 महीने अपनी सिटी से बहुत दूर दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ा विद मेडिकल कंडीशन, जब आप खुद ठीक नहीं है तो आपको कई समस्याओं का सामना पड़ा होगा, कुछ एक समस्या है जो आप श्रोताओं को बताना चाहते हो या जो जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनके साथ उनका सॉल्यूशन शेयर करना चाहते हो कि हाँ ये समस्या में आई थी, तो आप अगर कभी जाना हो तो आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप ये व्यवस्था लेके चले, आप अगर उन्हें कुछ बताना चाहते हो।
2: बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। और वैसे भी सौरभ जी मैं आपको बता दूं, मैं YouTube के ऊपर हूं, मेरे 3 वहां अपने मैंने अपनी वीडियो डिलीवर की हुई है, एक मेरी अपोलो की तरफ से भी है। मेरे पास बहुत फोन आते हैं थ्रू आउट इंडिया एंड अब्रॉड, जब वो मेरे से बात करते हैं ना तो आधी से ज्यादा टेंशन तो मैं उनकी दूर कर देता हूं। मैं कभी भी उनसे ना ऑडियो पे बात नहीं करता, वीडियो पे बात करता हूं। वीडियो पे देखता हूं कि वो मेरा चेहरा देखें
0: जी,
2: मैं कैसा दिखता हूं और क्या कैसे बात करता हूं, तो ये समस्या तो आधी मैं वैसे ही दूर कर देता हूं। उसके बाद क्या हुआ जी, हम गए, हमने वहां मकान लिया, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बड़ी है ये तो आप समझ गए हो, फिर भी हमने किसी तरह मैनेज कर लिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी समझ गए, वहां फिर आप किसी दूसरी जगह रह रहे हो, हर चीज की समस्या आती है। लेकिन अगर आप समस्या को समस्या ना लो, अगर आप समस्या को समस्या लोगे तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको कोई समस्या कोई नहीं है, जो भी आएगी ये हम ठीक करेंगे, इसको पार करेंगे, पूरी करेंगे।
0: बिल्कुल विमल जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे।

हेलो, मैं डॉक्टर आकिब, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो मेंस हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जनरली लोग खुद इग्नोर करते हैं। सो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेंस हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बाकी बॉडी की डिजीजेस इम्पॉर्टेंट है। सो स्क्रीनिंग और आपका जो हेल्दी इंट्रैक्शन विद योर डॉक्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर को कुछ लगता है कि आपके मेंस हेल्थ में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जो कि आपसे बात करके ही पता चलेगा, सो वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आगे कुछ ट्रीटमेंट लेना है तो वो आपको बता देंगे। सो मैसेज यही है कि आप अपने हेल्थ को, मेंस हेल्थ को पर्टिकुलरली इग्नोर ना करें। कोई भी आपको सिम्टम्स लगते हैं, जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड स्पीक अप। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: साथियों इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से आप सामने हाजिर हैं। हम बात कर रहे हैं विमल जी से। विमल जी अपने ट्रांसप्लांट की जर्नी की स्टोरी बता रहे हैं। जैसे कुछ समस्याएं, जैसे आपने बताया कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर पे थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, हाइजीन, खाने की व्यवस्था, उन चीजों की जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी जरूरत पड़ गई या दवाइयों की, इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया आपने?
2: सौरभ जी, मैंने सिलेंडर भी रखा हुआ था, कंसंट्रेटर भी रखा हुआ था
1: जी।
2: तो उसमें ये था कि मैंने दोनों चीजें रखी हुई थी।
1: ये जो आप बता रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर, तो ये आपको खरीदना पड़ा था या फिर रेंटल मिलता है वहाँ पर?
2: नहीं, वो मेरे साथ मेरा बेटा था, मेरी वाइफ थी, सारा सर्च किया लोकल, वहाँ पर हमारे को कंसंट्रेटर वाला मिला, उससे हमने कंसंट्रेटर लिया रेंट पे, सिलेंडर वाला मिला, नियरेस्ट कौन सा है उसे हमने सिलेंडर लिया रेंट पे। तो जो भी रेंट हमने पे करना था वो हमने पे किया, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी चीज नहीं है कि कोई चीज अवेलेबल ना हो।
1: अगर हम रेंट की बात करें तो जैसे कॉन्सेंट्रेटर हुआ या ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, करीब करीब कितना पैसा देना पड़ता है इनके एक महीने के रेंट के लिए?
2: डेट डिपेंड्स सौरभ जी, सबसे बड़ी बात,
1: थोड़ा सा हम आइडिया लेना चाहते हैं।
2: मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप कोठी लो या आप ऐसी जगह ले लो या आप ऐसी जगह ले लो, तो डेट डिपेंड्स। जैसे दिल्ली के अंदर है कि ये का रेंट 10,000 है, यही साउथ दिल्ली में चला जाएगा 50,000 हो गया, यही गोल्फ लिंक में चला जाएगा तो 1,00,000 हो गया, यू नो डेट एरिया। हाँ, तो उसके बाद क्या है, जितने भी ट्रांसप्लांट वाले होते हैं उनको जो रूम या बोला जाता है कि आपने वहां रहना है, उस जगह रहना है जहां पर कोई भी फंगस ना हो
1: जी,
2: मकान बिल्कुल क्लियर हो, साफ सुथरा हो, कोई आपको वहां से कोई बीमारी न लगे, टॉयलेट ठीक हो, किचन ठीक हो, हर चीज को वो देखते हैं। तो बिफोर ऑपरेशन तो वो इतना नहीं परवाह कर रहे थे, आफ्टर ऑपरेशन हॉस्पिटल खुद जाएंगे, चेक करेंगे, अगर उनको वो जगह जहाँ आपने आपके ऑपरेशन के बाद आपने शिफ्ट होना है वो उनको अप टू द मार्क लगी, तो वो आपको कहेंगे आपने यहाँ शिफ्ट होना है। उसके बाद क्या है कि बिफोर शिफ्टिंग हॉस्पिटल की टीम जाएगी, पूरे मकान को सैनिटाइज करेगी, पूरे मकान के अंदर जितनी भी फंगस ये वो जाला वाला है वो सब छाप करेंगे, और एक दिन के बाद फिर वो आपको अलाउ करेंगे कि यू कैन मूव देयर। अब मैं जहाँ रह रहा था, जो मैंने मकान लिया था, मैंने लिया था 60,000 पर मंथ
1: जी। सो हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
2: ठीक है सर।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी। कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

सामने हो। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था। पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

बहुत कुछ कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दें।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार साथियों, हमारा ये छोटा सा ब्रेक खत्म हो गया है और हम वापस अपने शो में आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं विमल जी से। हम विमल जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप ट्रांसप्लांट के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी में आप शिफ्ट होते हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे बात आगे बढ़ती है। तो विमल जी, आपने बताया कि आपने कॉन्सेंट्रेटर और जो भी मेडिकल डिवाइसेज या जो चीजें आपको जरूरत पड़ी थी आपको उन्हें रेंट पे लेना पड़ा था। तो इसके बाद आप हमें ये बताइए कि लंग ट्रांसप्लांट अब जब आपका हो गया तो उसके बाद की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए आपके, क्योंकि एक कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में लंग्स जिनके खराब हैं या जिनको लंग्स से जुड़ी बीमारियां हैं तो उनको तो बहुत स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो आपने कोरोना काल को कैसे काटा और अभी भी आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं?
2: आप भी बड़ा इसको बात को सुन के आप भी बड़े हैरान रहेंगे। नंबर वन ये है कि मैं दिल्ली और एनसीआर के अंदर पहला शख्स हूँ, आई एम द फर्स्ट मैन जिसका लंग्स और हार्ट एक ही दिन कंबाइंड ट्रांसप्लांट हुआ
1: जी।
2: पहला शख्स हूँ दिल्ली के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। ओके, मुझे भी पता है काफी हुआ है लेकिन लंग्स नहीं। जिसके लंग्स हुए हैं उसका हार्ट नहीं, ठीक है। कट्ठा एक ही आदमी का पूरे का पूरा सेट हार्ट एंड लंग्स का मुझे लगा है 6 जुलाई 2019। आज मुझे 2.5 साल होने वाले हैं। 2.5 साल 6 जुलाई 2019 से पहले मैं पेशेंट था
1: जी।
2: पहले मुझे ये पूछते थे विमल तेरा क्या हाल है, तो अब मैं पूछता हूँ भैया तुम्हारा क्या हाल है
1: जी।
2: तो ये वाइस वर्सा हो गया ना
1: जी। बिल्कुल,
2: आज पेशेंट आई एम नॉट द पेशेंट, आई वुड नॉट लाइक टू कॉल मी यार ये तो पेशेंट है। मैं अंदर से भी खुश हूँ बाहर से भी खुश हूँ। साथियों खुश इसलिए हूँ कि मेरे अंदर एक विल पावर है जीने की। जिसके अंदर जीने की चाह है ना, बाकी तो क्या कहते हैं, एक कहावत सुनी है कि वो खाक जिएंगे। मुझे ये पूरी कहावत का नहीं पता लेकिन मैं ये अपने ऊपर लेता हूँ, मैं बड़ा जिंदा दिल हूँ। और ये ड्यूरिंग दिस आफ्टर माई ऑपरेशन, मैंने 6 महीने बाद मेरे ऑपरेशन के, इतने मेजर ऑपरेशन के बाद 6 महीने मैंने अपनी कार चलानी शुरू कर दी थी, वो भी हाथ पे। ये भी एक मिराकल है। मैंने बच्चे बैठाए भी, मैं वाइफ को बैठाया, मैंने कहा चलो यार ये तो हो गया सो हो गया, पेशेंट खत्म, अब विमल कुमार शर्मा है। साथियों मैं जिंदा दिली मेरे अंदर इतनी है, अगर आप मेरे से कभी भी फेस टू फेस बात करोगे मैं अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता हूँ, आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। एक ख्वाहिश है लंबी इनिंग खेलने की, तो खेलेंगे। 2020 वाला मैच नहीं है, लंबी इनिंग। तो लंबी इनिंग का मतलब है जितनी भगवान ने मेरे को वोट किया है, उसने मेरे को मेहरबानी किया है, तो उसका मैं एंजॉय करूंगा। और ये भी नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ मेरे को हिदायतें हैं वो मैं बरतूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ

विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सेहत की बात जब होती है तब हम अक्सर डाइट, फिटनेस और एक्सरसाइजेस की बातें करते हैं, लेकिन बॉडी के कुछ सिग्नल ऐसे भी होते हैं जिन्हें मैन अक्सर इग्नोर कर देते हैं, UTI। आज हम बात करेंगे UTI के ऊपर। यूरिन करते वक्त जलन, बार बार वॉशरूम जाना, यूरिन रोकने में दिक्कत या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन, क्या ये सिर्फ छोटी मोटी प्रॉब्लम है या फिर बॉडी किसी बड़ी दिक्कत की तरफ सिग्नल दे रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मेन में यूरिनरी इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके सिम्टम क्या है और कब डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ पोषण की पाठशाला में जुड़ रहे हैं डॉक्टर आकिब, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट है फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर से आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आकिब आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, हमें बहुत ही आसान शब्दों में समझाइए आखिर UTI क्या होता है, मेन में इसके सबसे कॉमन सिम्टम क्या है अगर हम सिम्टम्स की बात करें, और साथ ही ये बताइए कि किन सिम्टम को इग्नोर करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है।
1: सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो मेरा नाम डॉक्टर आकिब है, मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। प्रेजेंटली मैं यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 और सेक्टर 88 में काम करता हूँ। आपका सवाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिकली अगर हम बताएं तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो कि किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा, कहीं भी उसमें इन्फेक्शन हो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इन जनरल लैंग्वेज जैसे पेशाब का इन्फेक्शन होना, वो लिमिटेड टू दीज ऑर्गन्स रहता है, उसी को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स में, मेन और वुमन, जनरली फीमेल्स में बहुत कॉमन रहता है UTI, मेल्स में उतना कॉमन नहीं।

0: में पेन होना, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आना, या कई बार पेशेंट बोलता है कि मेरे पेशाब में ना बहुत गंदी स्मेल आती है, तो ये सब चीजें यूटीआई हो सकती हैं। ये जो सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने बताए, इनफैक्ट सारे सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हैं। यूरिन में ब्लड आना, बार बार आपका यूरिन बार बार जाना, फ्रीक्वेंसी सडनली चेंज होना, पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना या रुक रुक के पेशाब आना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं यूटीआई के। और अगर प्लस फीवर, ये कॉमन सिम्टम्स हैं, और अगर ये चीजें आती हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए।
1: जी डॉक्टर, आज हमें डॉक्टर ने बहुत ही क्लियरली समझाया है कि यूरिन से जुड़े कुछ सिम्टम्स को कभी भी नॉर्मल समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर मेन में यूटीआई होता क्यों है? क्या हमारी डेली हैबिट भी इसके पीछे की वजह हो सकती है? इस सवाल का जवाब भी जानेंगे डॉक्टर आकिब आपसे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल है। अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत ज़रूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेज का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज डॉक्टर आकिब। तो डॉक्टर आकिब, आज हम बात कर रहे हैं मेंस यूटीआई हेल्थ को लेकर। सबसे पहले हमें ये बताया आपने कि आखिर यूटीआई क्या होता है, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेन में यूटीआई होने का सबसे कॉमन रीजन क्या है, और क्या वो रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से यूटीआई अक्सर होता है, और साथ ही अगर यूटीआई को बहुत ही नॉर्मली लिया जाए तो इसका हमारी हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ता है।
1: जी बिल्कुल, मेल्स में यूटीआई जैसे मैंने बोला कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है, सो अंडरलाइंग वी हैव टू सी कुछ उनका प्रॉब्लम्स क्या है जिससे ये हो रहा है। सो कॉमन चीजें डायबिटीज, पोअर हाइजीन, साफ सफाई ना रखना, पानी का कम लेना, सो ये सब कॉमन चीजें हैं जिसकी वजह से मेल्स में यूटीआई हो सकता है, या कोई स्ट्रक्चरल डैमेज, स्ट्रक्चरल चीजें जो पेशेंट के यूरिनरी ट्रैक में है, जैसे किडनी का शेप डिफरेंट है, किडनी में कोई स्टोन्स पड़े हैं, कई रास्ते में रुकावट है, जिसमें प्रोस्टेट एक ओल्ड एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उस पे हम आगे बात करेंगे, उसकी वजह से यूटीआई बार बार हो सकते हैं। एक इसमें जो पॉइंट आपने बताया सेक्सुअल एक्टिविटी, यस दैट कैन आल्सो कॉज यूटीआई। सो अगर किसी पेशेंट को जनरली अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स के बाद में यूटीआई होता है या ये सिम्टम्स होते हैं, सो दैट इज आल्सो अ कॉमन रीजन। इसलिए उनको दोनों पार्टनर्स को एक बार डॉक्टर के पास जाके अपने आप को एग्जामिन करवा लेना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, और बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शानदार सिटवेक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। और आज मैं अकेली नहीं हूँ स्टूडियो में, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेब। और आज हम डॉक्टर से जान रहे हैं मेंस यूटीआई हेल्थ के बारे में। तो डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ अब यूटीआई के सिम्टम की, अगर किसी मेन को यूटीआई सिम्टम है तो डॉक्टर तक पहुँचने के बाद डायग्नोसिस कैसे होता है, और साथ ही क्या यूरिन टेस्ट या फिर यूरिन कल्चर की जरूरत पड़ सकती है? इसके साथ ही ये भी बताइए, क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स लेने से सिम्टम कम होते हैं? और साथ ही अगर मेडिसिन बंद कर दे तो कितना डेंजरस हो सकता है अनट्रीटेड यूटीआई, अक्सर किडनीज तक भी पहुंच जाता है। सो इस बारे में भी हमें बताइए,
1: यूटीआईज के सिम्टम्स क्या हैं? तो डॉक्टर के पास आप पहुंचेंगे और कैसे डायग्नोस होगा? सिम्टम्स हमने पहले बता दिए क्या क्या हैं। तो आपकी, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी एक हिस्ट्री लेगा, है ना, ये सब चीजें आपसे पूछेगा, आपके रिस्क फैक्टर्स हैं वो पूछेंगे, और उसके बाद में आपको एग्जामिन कर लेंगे। उसके बाद में कुछ एक टेस्ट होते हैं, जैसे बेसिक टेस्ट, यूरिन का टेस्ट है जिसमें रूटीन और कल्चर टेस्ट होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है, और अगर जरूरत पड़े कुछ ब्लड के टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं जिससे कि यूटीआई का डायग्नोसिस बनता है। रहा सवाल एंटीबायोटिक्स, खुद से एंटीबायोटिक्स लेना एक हमारी सलाह नहीं है, आपको प्रॉपरली डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए, उसके बाद ही डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स करे वो ले लेना चाहिए। अनट्रीटेड यूटीआई किडनी तक पहुंच सकता है क्या? बिल्कुल पहुंच सकता है। अनट्रीटेड यूटीआई अगर होता है किडनी तक पहुंचेगा तो उसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइट्स। अगर पेशेंट को पाइलोनेफ्राइट्स होता है तो उसमें बुखार के साथ ठंड आना, कमर में बहुत दर्द होना और यूरिन की दिक्कत, ये सब चीजें रहती हैं। और एक बार किडनी इफेक्ट हो गई पाइलोनेफ्राइट्स तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, कई बार ट्रीटमेंट आपका जो है उतना सीवियर होता है, सिम्टम्स की बीपी कम होना, आईसीयू में पहुंचना, इन सब चीजों तक नौबत आ जाती है।
0: बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज डॉक्टर ने हमारे साथ शेयर की है, मतलब सिम्टम को दबाना नहीं बल्कि उनकी वजह समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेटर होता है, ये भी याद रखिएगा। सो डॉक्टर, अभी हमने सिम्टम्स के बारे में बात की, प्रिवेंशन के बारे में बात की, लेकिन अपना कुछ ऐसे सिंपल हैबिट्स के बारे में भी जानेंगे जो मेंस अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं यू म्यूजिक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजली। और आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है मेंस यूटीआई हेल्थ। सो मेरे साथ डॉक्टर बने हुए हैं, डॉक्टर आकिब स्टूडियो में। डॉक्टर, मैंने बहुत कुछ जाना आपसे यूटीआई के बारे में, सिम्टम्स के बारे में भी जाना, प्रिवेंशन के बारे में भी जाना, लेकिन अब बात करते हैं यूटीआई से बचने के लिए मैंने अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल हैबिट्स है जो अपना सकते हैं। और साथ ही अगर बात की जाए फीवर, चिल, बैक साइड पेन, वॉमिटिंग या फिर यूरिन में ब्लड जैसे सिम्टम्स जब आ जाएं, तो क्या इमरजेंसी वार्निंग साइन हो सकते हैं जिन्हें एक मैन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। सो ये सारी सिम्टम्स जो हैं, जैसे ब्लड आना, फीवर, बार बार यूरिन जाना, पेशाब करने में जलन होना, ये सारी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। इसमें से आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। ये सिम्टम्स हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपना इन्वेस्टिगेशन और आगे का ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। नाउ आपने बताया प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मेल्स, लिक्विड इनटेक अच्छा रखना, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, और साफ सफाई का ख्याल रखना। खासकर मेल्स में फोर स्किन कई बार रहती है, जो सम पीपल टेंड टू नॉट कीप इट क्लीन, सो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको रोज साफ कर लेना चाहिए। और अगर यूरिन में कुछ भी सिम्टम्स हैं, जैसे रुकावट होना, खुल की पेशाब नहीं आना, दैट प्रिडिस्पोजेस अ पर्सन टू इन्फेक्शंस, इसलिए उसको एड्रेस करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्लस कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या होती है, जिसमें कि सबसे कॉमन डायबिटीज है, डायबिटीज कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू
0: सो मच डॉक्टर। और डॉक्टर, आज आपने हमारे लिसनर्स को यूरिनरी हेल्थ से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दी है। अक्सर मेन ना हेल्थ के कुछ इश्यूज पर बात करने में हेजिटेट फील करते हैं, लेकिन हेल्थ में एम्बैरेसमेंट की नहीं बल्कि अवेयरनेस की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, आज आप हमारे साथ पोषण की पाठशाला में जुड़े। हमारे लिसनर्स को सभी सवालों के जवाब आज आपसे मिले हैं, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बॉडी के सिग्नल को इग्नोर नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करना चाहिए। सेहत से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम अगर हम टाइमली ट्रीट करते हैं ना, तो वो ठीक हो जाती है। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखे, अपनों का ख्याल रखे। दिस इज आरजे अंजली साइनिंग ऑफ।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद डॉक्टर.

0: हर सफर में एक ऐसा साथी जरूर चाहिए जो सिर्फ सेवाएं नहीं भरोसा भी दे।
1: सालों से लाखों लोगों के विश्वास का नाम अलंकित,
0: और अब अलंकित फरीदाबाद में एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: आप सादर आमंत्रित हैं अलंकित के नए ऑफिस के इनॉगरेशन पर 7 सितंबर 2026
0: सोमवार सुबह 10 बजे से SCO 36 फर्स्ट फ्लोर मंशा वेगा स्ट्रीट Sector 82 फरीदाबाद।
1: आइए इस विशेष अवसर का हिस्सा बने और हमारे साथ इस नई शुरुआत का उत्सव मनाएं।
0: चाहे बात हो निवेश की, डीमैट अकाउंट की, बीमा सेवाओं की, पैन संबंधी सुविधाओं की, GST समाधान की या वित्तीय योजना की,
1: अब आपकी हर आवश्यकता का भरोसेमंद समाधान एक ही पते पर। आइए एक नए अध्याय के शुभारंभ के साक्षी बनिए। अलंकित लिमिटेड, विश्वास का नाम, विकास का साथी।
2: ब्रेक ओवर, गाना शुरू।

कभी कभी ना ऐसा लगता है जो बातें हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में कह नहीं पाते वो किसी नज्म में निकल जाते हैं, किसी कविता में सांस लेने लगती हैं। और शायद इसीलिए हर पोइट सिर्फ लिखता नहीं है बल्कि अपना एक हिस्सा छोड़ जाता है अल्फाजों में। और आज का दौर इंटरेस्टिंग है, यहाँ फीलिंग सिर्फ डायरीज तक लिमिटेड नहीं होती हैं, वो स्टेज पर आती हैं, माइक पकड़ती हैं और हजारों लोगों को एक साथ फील करा देती हैं। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसी आवाजों का

0: पर जुड़ने वाला है। आज दिल शायराना में मैं आपके साथ मौजूद हूँ गीत, और आज मेरे साथ यहाँ रेडियो महारानी के स्टूडियो में बहुत सारी पोइटेस मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ अमृत प्रिया है, श्वेता है, कवित्री सोनम है, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमृत प्रिया, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपकी जो ये जर्नी है, जो पोइट्री की जर्नी है, वो कैसे स्टार्ट हुई थी, कब आपने सोचा कि अब आपको लिखना चाहिए?
1: हाँ, ऐसे कोई बेसिक टाइमलाइन तो नहीं है, पर जब पहली बार मोहब्बत हुई थी जैसे सबको होती है, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए मैं थोड़ा कुछ कुछ लिखती थी।
0: आपने आपने उनको इम्प्रेस करने के लिए लिखा, उनको सुनाया था?
1: हाँ, सुनाया था।
0: तो क्या रिएक्शन था?
1: तो ही वाज वेरी हैप्पी कि वाओ, बट बाद में फिर ब्रेकअप हो गया।
0: तो ब्रेकअप पे भी लिखी थी?
1: हाँ, उसके बाद में पोएटिस बन गई।
0: नाइस। तो ये जो पूरा क्रेडिट आपके ब्रेकअप को जाता है, आई थिंक, है ना, कि आप
1: पोएटिस होंगी उस मोहब्बत को जाता है जो, क्योंकि लिखना तो तभी स्टार्ट किया था ना।
0: जी जी।
1: फिर प्रोफेशन मैंने बाद में बनाया।
0: जी जी। तो श्वेता, आपके पास आते हैं, आपने कैसे लिखना स्टार्ट किया, क्या जर्नी रही है एग्जैक्टली? ये
2: मेरी जर्नी जो मेन रही है वो दिल तोड़वाने के बाद रही है।
0: अच्छा जी। ये दिल तोड़वाने का सिलसिला जारी है अभी भी।
2: होता ना कि हम सामने वाले से मतलब मोहब्बत करते हैं, दिल तो आपका बीच बीच में टूट रहा होता है, पर आपको पता नहीं होता, आप अपनी बातें कह ही नहीं पाते। तो जब मैं सामने वाले शख्स से अपनी बातें कह ही नहीं पाती थी, हमारी वजह से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता, तो उसका जरिया मैंने फिर लिखने को चुना, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि रिलेशनशिप पे बात आ रही थी। शुरुआत हुई मेरी।
0: जी जी। सोनम, कैसे आपने स्टार्ट किया लिखना?
3: जी, मुझे शुरू से ही कविताएं पढ़ना बहुत पसंद था। जैसे स्कूल्स में हिंदी की बुक है, उसमें छोटी छोटी कविताएं थी, तो मैंने अपनी पहली एक शायरी लिखी थी मेरे ख्याल से 12th में, तो वहीं से ये जर्नी शुरू हुई। बस मंच में मुझे 1.5 साल हुए हैं, ज्यादा नहीं।
0: तो बातें जारी रहेंगी, वक्त है गाने का, गाने के बाद हम फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: फिर से स्वागत है, शो है आज दिल शायराना में आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। तो यहाँ हम बातें कर रहे हैं तीन पोइटेस से, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें चल रही हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि जो पोइट होता है ना, उसके वर्ड्स का एक मूड होता है। आपके अल्फाज ज्यादा किस चीज से पैदा होते हैं, क्या लगता है आपको, अल्फाज जो होते हैं या पोइट्री जो होती है वो किस चीज से पैदा होती है? ऑब्जर्वेशन से पैदा होती है या फिर आपके जो पर्सनल इमोशंस हैं? जैसे आपने तो कहा कि आपके तो पर्सनल इमोशंस रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है किस चीज से पैदा होती है पोइट्री?
1: पोइट्री दो चीजों से मेरे हिसाब से पैदा होती है, या तो बहुत ज्यादा मोहब्बत है या बहुत दर्द है।
0: ओके, क्या ऐसा भी होता है कि किसी और की लाइफ से भी आप कुछ ऑब्जर्व करके लिखते हैं?
1: वो होती दो इमोशंस के इर्द गिर्द कि अगर किसी और की लाइफ में भी, या तो आप वहाँ पे दर्द देख रहे हो या वहाँ मोहब्बत देख रहे हो, तो दो इमोशंस ही मेनली मेरे हिसाब से होता है।
0: ओके, आपको क्या लगता है?
2: एक दायरा और है, जब हम किसी चीज को ना बहुत गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी पर्सन को हो, कोई इमोशन हो, आप किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी चीज से, तो वहाँ पे भी आपके इमोशंस निकलते हैं।
0: okay.
2: चाहे वो दर्द हो, तकलीफ हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो।
3: जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर वो कवि या कवियत्री जिसके अंदर प्रेम तत्व है, चाहे उसने किसी से प्रेम किया या नहीं किया, अक्सर हम प्रकृति को देख के प्रेम में होते हैं, या बादल, बारिश, तो हम सब प्रेम या दर्द। हमें किसी इंसान से मोहब्बत हो तभी हम लिखेंगे, किसी मनुष्य में प्रेम तत्व होगा आप तब लिख सकते।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही। तो यहाँ वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है आज दिल शायराना, मैं आपके साथ गीत हूँ। मेरे साथ यहाँ महफिल लगी हुई है तीन कवित्रियों की। अब बात कर लेते हैं स्टेज पोइट्री के बारे में। स्टेज पोइट्री का ना एक अलग ही प्रेशर होता है, लोग सिर्फ सुनने नहीं आते, रिएक्ट भी करते हैं कभी कभी। तो क्या लगता है जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आपकी क्रिएटिविटी को खत्म करती हैं या और ज्यादा बढ़ा देती हैं? क्या लगता है, आपसे ही जानना चाहूंगी मैं।
1: मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ाती हैं। पहली बार ही आपको ऐसा लगा कि जैसे नए नए पोइट कवि कवित्री जाते हैं तो वो थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, बट वही वो टाइम होता है कि आपको समझना होता है कि आप सच में इस

0: ये इश्क मोहब्बत आशिकी जनाब अच्छे अच्छों का गुरूर छीन लेते।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो सामने से बहुत ज्यादा आई थिंक आपको तालियां मिली होंगी, वाह वाह मिली होगी।
0: जी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि कभी कभी बेबहर चीजें भी बहुत अच्छी होती हैं और उन्हें अगर आप मीटर में लाना चाहोगे ना तो वो भाव खत्म हो जाता है। तो कभी कभी बिगड़ी हुई चीजें भी बहुत सुंदर होती हैं।
1: मैं इस क्वेश्चन पर भी आने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, लेकिन उससे पहले एक गाना सुन लेते हैं। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

Hi, I'm Dr. Tanu. I'm an MD medicine diabetologist. I've been practicing for last 10 years. And yes, I also run a supplement company. I am a fellow in regenerative medicine. And my advice today comes for women who have done their first inning and now they're in their second inning. पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स. एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेज ऑफ योर लाइफ, वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें

कम होती चली जाएंगी। अब बहुत जरूरी है कि हम पांच चीजों पर ध्यान दें। पहली चीज, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर। सेकेंड, प्रोटीन, एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक यू नो 40 साल की जिंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें। अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर। थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती, यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है। फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज्ड, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो। इस टाइम पे बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, बहुत लोग बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं अपने पार्टनर से, दे आर गोइंग थ्रू अ एरे ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग व्हेन यू आर सिटिंग विद राइट पीपल। पांचवीं चीज, यू विल हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज अब आपकी जैसा यू नो आपका पहले जैसा सुंदर दिखना, आपकी डाइट का चेंज होना, आपको वेट गेन होना, आपको बहुत वेट गेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी। ये पांचवी चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन योर लिस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल, यू हैव गुड मनी ऑल्सो, यू हैव गुड लाइफ ऑल्सो, पर ये पांच चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

0: गाने के साथ स्वागत है, शो है आज दिल शायराना में आपके साथ गीत हूँ और आज यहाँ रेडियो महारानी के स्टूडियो में महफिल लगी हुई है तीन पोइटेस की। आपसे जानना चाहूंगी श्वेता, एक वक्त था जब शायरी सिर्फ महसूस की जाती थी लेकिन अब रिकॉर्ड भी होती है, वायरल भी होती है, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया ने पोइट्री को ज्यादा पावरफुल बनाया है या थोड़ा सा सुपरफिशियल भी बना दिया है?
1: पावरफुल बनाया है बट इसके कुछ लो पॉइंट्स भी हैं कि लोग कॉपी करके लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, उस चीज को वायरल करना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसी की फेमस है शायरी या कुछ लाइनें चंद फेमस है, सोचते हैं कि हाँ ठीक है यार हम अपनी आवाज में उसको फेमस करते हैं। वो होता था कि
0: और आई थिंक क्रेडिट भी नहीं देते हैं,
1: सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो जो उसके असली हकदार होते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं।
0: अमृत प्रिया, आपसे एक सवाल है, बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन हर कोई कनेक्ट नहीं कर पाता है, आपके हिसाब से एक अच्छी कविता की पहचान क्या होती है?
2: मैंने पहले भी कहा था कविता दो इमोशंस पे ही लिखते हैं, या तो मोहब्बत होता है या दर्द होता है। तो अगर आपसे कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके दो ही रीजंस हो सकते हैं, आप दर्द पढ़ रहे हैं और वो मोहब्बत में आप मोहब्बत पढ़ रहे हैं और वो दर्द में है, तो वो तो अपोजिट जाएगा ना, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, बाकी ऐसा तो नहीं होता। मोस्टली कनेक्ट अगर आप दिल से कोई बात कह रहे हैं तो वो दिल तक पहुंच ही जाती है।
0: एक्चुअली मेरा जो मेन सवाल है वो ये है आपसे कि अगर जो लोग इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कहाँ से शुरू करें, किन कवियों को पढ़ें, कौन सी कविताएं पढ़ें?
2: वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में, क्योंकि कविताओं में भी बहुत सारी फील्ड है। आप शायरा बनना चाहते हैं, आप कवित्री बनना चाहते हैं, आप स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से आपको आगे देखना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जैसे मैं पर्सनली शायरा बनना चाहती हूँ, मैं गजलें लिखती हूँ, मैं नज़में लिखती हूँ, तो मैंने जहाँ से स्टार्ट की कि सबसे पहले हम बहर सीखेंगे।
0: तो आपने सबसे पहले किसको पढ़ा था
2: बहर सीखने के लिए? तो एक किताब आती है गजल की बाबत, उसमें नियम बताए होते हैं। उसके बाद फिर हमारे इतने अच्छे अच्छे शायर हैं, तो सबको पढ़ना ही है, गालिब, जमाल एहसानी साहब हैं, और भी अब तो हिंदुस्तान में ही इतने अच्छे अच्छे शायर हो गए, अहमद फराज साहब हो गए हैं, बहुत सारे नाम है, निदा फाजली जी हैं।
0: जी जी जी,
2: आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते
0: हैं। मैं ये नोटिस करती हूँ जो लोग सबसे ज्यादा दूसरों को फील करवा देते हैं वो खुद काफी चीजें छुपा कर रखते हैं, तो ऐसा होता है आपके साथ?
1: बहुत बार इंडिपेंडेंट वुमेन खासकर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं वो
0: अच्छा क्यों छुपा के रखते हैं?
1: रीजन ये है कि देखो एज अ वुमेन ना हमें ये लगता है जब हम अपने दर्द को एक्सप्रेस करते हैं ना सामने वाले को, और जब एक बार रिजेक्शन मिलता है, दो बार मिलता है, सामने वाला नहीं समझ रहा, तो हम लोग एक शेल्टर बना लेते हैं अपने आसपास कि यार बहुत हो गया, अब नहीं, अब या तो हम लिखने में लगा देंगे या तो गाने सुन के बहा देंगे, रो धो के मतलब उस इमोशन को बाहर निकालेंगे, पर हम सामने वाले को नहीं बताएंगे। तो ये वाला सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट है, जब आप बार बार रिजेक्ट होते हो तो फिर आपको एक एक्सेप्टेंस आती है। मेरा मैं एक बात कहती हूँ कि हर इंसान मतलब फेलियर आ रही होती है ना, आप बार बार फेल होते हो किसी चीज में, चाहे वो किसी भी चीज में, आपकी लाइफ में ना एक सुबह आती है, वो सूरज आता है, वो आपको ये सिखाता है कि यार इसके बाद ना आपकी शुरुआत अलग होगी, अब आपको इस तरीके से सोचना है या इस तरीके से जिंदगी जीनी है, ये रीजन है सबसे।
0: कभी किसी लाइन को लिखने के बाद आपको ऐसा लगा हो शायद ये मुझे स्टेज पर पढ़नी नहीं चाहिए? आपको लगा सोनम? लगा
2: बहुत बार होता है,
3: पहली बार लिखा था, मतलब पहली जो कविता थी मेरी वो मेरी देशभक्ति पे थी, मुझे याद नहीं है, उसे मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं। अभी रिसेंट में मुझे एक माइकॉन में इनवाइट किया गया था, बल्कि तो वहाँ पे मैंने नई नई रचना लिखी थी देशभक्ति की, था वो, और वो मेरी जुबान पे चढ़ा भी नहीं था, तो मुझे फोन पकड़ के पढ़ना पड़ रहा था, और वो मतलब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे हम क्या सुन रहे हैं।
0: फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई उसको सुनाने की,
3: कहीं वहां पे मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई, लेकिन मैं खुश भी थी, मैंने कहा चलो मुझे पता चल गया कि मेरा एरिया जो है वो श्रृंगार है, प्यार है, वियोग है, वही मुझे लिखना है, मैं अगर कुछ और नया ट्राई करूंगी तो वहाँ नहीं होगा, तो मैं डिसअपॉइंट कम हुई, मैं खुश ज्यादा हुई लोगों का रिएक्शन देख। तो पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ, वरना हर इवेंट मेरा ए बन जाता है।

ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अका गुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकीर, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल है। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए Day 1 एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।

0: इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है आज दिल शायराना।
1: आपकी रचनाओं पर आ जाते हैं हम। आपकी जो रचनाएं हैं वो हम चाहेंगे आज डेफिनेटली आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएं। शुरुआत हम प्रिया से करते हैं। प्रिया, आपकी कोई रचना?
2: जो मैं एक गजल सुना देती हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: मैंने भी रिसेंट में ही लिखी है, पढ़ी भी नहीं है। सुनेगा कि क्या तेरे इश्क में करना सीखे, जीना सीखे या कि मरना सीखे। क्या तेरे इश्क में करना सीखे, जीना सीखें या कि मरना सीखें। कुछ तो संगत का असर हो तेरी, हम भी बातों से मुकरना सीखें।
1: क्या बात है।
2: कुछ तो संगत का असर हो तेरी, हम भी बातों से मुकरना सीखें। ऐसे गिर गिर के मैं चलती हूँ रोज, जैसे बच्चे यहाँ चलना सीखें। लोगों पे हंसने से बेहतर है हम, लोगों पे हंसने से बेहतर है हम, लोगों के साथ में हंसना सीखें।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
2: अपने इन आंसुओं को समझाओ, अपने इन आंसुओं को समझाओ, बहने से अच्छा है उबलना सीखे।
1: हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। श्वेता, आपके पास आते हैं। आपकी कोई रचना जो आज आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें?
3: बिल्कुल, मैं सेल्फ लव पे बोलना चाहूँगा।
4: हर इंसान को अपने आप से प्यार जरूर करना चाहिए। तो जब मैंने खुद से प्यार किया दोबारा, तो मैंने उस पे लिखा था कि मैं जब भी लिखूंगी अपने बारे में खूबसूरत दास्तान लिखूंगी, मैं जब भी लिखूंगी अपने बारे में खूबसूरत दास्तान लिखूंगी, अधूरी ही सही मगर हर सवाल का मुकम्मल जवाब लिखूंगी। अपना हसीने आलम ना सही, अपने हर हालात लिखूंगी, मैं लिख अगर पाई तो अपनी ही कलम से अपना इतिहास लिखूंगी।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत
4: शुक्रिया।
1: सोनम, आपके पास आते हैं। आपकी हुई रचना?
5: माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ सर्वप्रथम, उसके बाद अपने आपको निवेदन करती हूँ चार पंक्तियाँ।
1: बिल्कुल।

0: रहे तो सुनाऊं किसे सनम, जब तुम ही नहीं तो ये सुनाऊं किसे सनम।
1: तो आप तीनों लोगों से बात करके बहुत मजा आया और आई होप आपकी जो बातें हैं वो भी आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दी होंगी ऑलमोस्ट। थैंक यू सो वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू
2: बुलाया
1: जी। थैंक यू अगेन। तो ये था आज का शो, आज दिल शायराना, मैं आपके साथ गीत हूँ। तो हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कुछ मुलाकातें सिर्फ एक इंटरव्यू तक नहीं होती, बल्कि वो एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां हम किसी पर्सनालिटी को उनके काम से थोड़ा परे जाकर जानने की कोशिश करते हैं। और आज की खास मुलाकात भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। आज मेरे साथ हैं एक कंटेंट क्रिएटर जिनके वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे, जिनकी बातों में थोड़ी बेबाकी है, थोड़ा ह्यूमर है और अपना एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। तो आज उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके कुछ इंटरेस्टिंग साइट्स को जानेंगे। मैं हूं आरजे पलक और मेरे साथ हैं यश शर्मा, जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया पर अपने यूनिक कंटेंट और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मिलियंस में व्यूज, रोडीज ऑडिशन का एक्सपीरियंस और बिग बॉस कंटेस्टेंट्स पर उनकी ओपिनियंस। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग टैलेंट और है इनका, यश रैप भी करते हैं। तो आज इन सभी चीजों पर बात होगी, कुछ सीरियस सवाल होंगे, कुछ थोड़ी मस्ती भी होगी। सो वेलकम यश।
1: थैंक यू सो मच पलक फॉर इनवाइटिंग मी।
0: सो यश, आपने ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे स्टार्ट करी, लाइक एचआर में क्यों कंटिन्यू नहीं करा?
2: यार मैं आपको बताता हूँ कि हर किसी की ना जर्नी का एक रूल होता है। जैसे लोग सोचते हैं कि हमें ये बनना है, वो बनना है, ये करना है लाइफ में। मेरा ना एक मोटिव ये था, या फिर मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था मुझे क्या करना है, बस मुझे ये पता था क्या नहीं करना। मुझे जॉब नहीं करनी। मैं नहीं चाहता कि 50 साल की उम्र में हाथ में टिफिन लेके ऑफिस जा रहा हूँ, रात को 9 बजे 10 बजे घर आ रहा हूँ, बच्चे यहाँ पापा आएंगे, चलो मूवी देखें या खाना खाएं। मुझे ये पता था कि ये लाइफ मुझे नहीं जीने, टिपिकल अंकल वाली लाइफ। अंकल नहीं बनना, मुझे लग रहा है कि जब मैं 50-60 साल का भी होऊंगा तो मुझे कूल अंकल बनना है। तो मुझे पता था कि जॉब नहीं करनी है, तो क्या करना है। तो मेरे अंदर स्किल्स थी, मैं लिखता था, पोएट था, मैंने आपको बताया भी, म्यूज़िक करता था, बट वो मैंने 7-8 साल पहले शुरू किया था, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन ना मैं जॉब में कुछ चल रहे थे इश्यूज, सुननी बस की नहीं हमारे, तो मेरी अपने MD से लड़ाई हो रखी थी और मैं USHR हेड था बाय द वे। तो मेरी कभी मेरे कलीग से लड़ाई नहीं हुई, हमेशा तो MD से, मैनेजर से या फिर डायरेक्टर से, इन सब से होती थी, क्योंकि उनसे मेरी ईगो क्लैश होते थे कि वो ये करो, मुझे नहीं करना ये चीज़ें। तो मैं बैठा हुआ था और मुझे था कि यार रिज़ाइन कर दूँ, क्या करूँ। रील्स देख रहा था और मैंने देखा कंटेंट आ रहा है, मैंने कहा यार ये मैं भी तो कर सकता हूँ, क्या चल रहा है ये, करते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है करते हैं। मैंने मेरा जो पहला व्लॉग है यूट्यूब पर, अभी भी देखोगे तो वो सेम यही है, लेटा हुआ उठा रहा हूँ कि हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, और मैंने जब बनाया भी नहीं था, नाम भी नहीं सोचा था तब तक। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और मुझे 10-15 दिन भी नहीं हुए थे शुरू करे हुए, मुझे लगा कि मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ, घिस रहा हूँ, पोएट्री कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, नहीं हो पा रही चीज़ें जॉब के साथ, एक काम करते हैं जॉब छोड़ते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं लाइफ में ये बोलूँ कि यार यश तू कर सकता था, काश तूने अपने आपको मौका दिया होता, मुझे ये नहीं करना था। तो मुझे वो मौका देना था, तो मैंने सोचा अपने आपको 2-3 साल देखते हैं, नहीं होगा तो फिर ठीक है। जो लोगों का लाइक करंट लाइफ है ना, लोगों की जर्नी है, मेरे लिए वो वर्स्ट ऑप्शन है। वर्स्ट क्या होगा मेरे लिए कि मुझे जॉब करनी पड़ जाएगी, मेरे लाइफ का वो नाइटमेयर है। और जो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बात नहीं है, जो लोग जी रहे हैं लाइफ, मेरे लिए वो वर्स्ट ऑप्शन है कि क्या नहीं हुआ तो क्या करूँगा, जॉब कर लूँगा, ये चीज़ें हैं। क्योंकि तब भी जब मैं जॉब कर रहा था, बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लाइफ का, क्योंकि मेरी सैलरी 1 लाख पर मंथ थी उस वक्त, और वो छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट मैंने छोड़ा, कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और एक साल काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था, बड़ा सबसे चल रहा है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

उसे गंदा करना कैसे भला। अगर बप्पा से प्यार है तो प्रकृति से भी प्यार रखो, उत्सव की खुशी मनाओ पर धरती का भी ख्याल।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं यश शर्मा।
1: अच्छा यश, आपने अपनी इंस्टा बायो में लिखा हुआ है कि मैं तो सच बोलता हूँ लेकिन बुरा अपने आप लग जाता है, तो ये कौन सा सच है जो लोगों को बुरा लग रहा है?
2: मैं तो सच बोलता हूँ बुरी अपने आप लगती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहले कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहा था, कॉमेडी स्किट्स बनाता था, ठीक है, और वो बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत हसल नज़र आ रहा था मुझे। मैं बहुत परेशान था कि मेरी क्या नीश होगी, मतलब मैं भगवान पूछ रहा, भगवान मेरी क्या नीश होगी, मुझे क्या बनाना है, नहीं समझ आ रहा था। फिर आया बिग बॉस लास्ट ईयर, और बिग बॉस का हूँ मैं कीड़ा, बचपन से देख रहा हूँ। तो जैसे हम लोग ना बिग बॉस देखते हो सोचते हो कि अरे क्या कह रहा है, मैं होती तो ये कर देती। तो मैंने फ़ोन उठाया और मैंने उस पर रोस्ट करना शुरू किया बिग बॉस पे, मतलब रोस्ट इन द सेंस अपने POVs देने शुरू किए। और मैं जब बना रहा था तो किसी को कंटेस्टेंट पसंद आता है, किसी को नहीं आता, तो मैंने रोस्ट किया। स्टार्टिंग में मृदुल को रोस्ट कर रहा था कि भाई तेरे को हमने इतना वोट देकर वहाँ पर पहुँचाया है, स्टार्टिंग में उसकी वोटिंग मिली ना शहबाज के साथ, तो वहाँ क्या कर रहा है, चुप बैठा है, शांत बैठा है, वो नताली के साथ घूम रहा है, जाके वहाँ पर खेल। तो लोगों ने बहुत गालियाँ देनी शुरू करी मुझे कि ये वो वगैरह वगैरह, तू तो PR कर रहा है, गालियाँ, तू फेम खाना चाहता है, हाइप लेना चाहता है। मैं बोल रहा यार मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। हमें मृदुल से ये थी चीज़ें कि वो जाकर वहाँ पर कुछ करेगा, वो नहीं कर पा रहा, शांत बैठा है। तो मैं सच बोल रहा हूँ, लोग बुरी क्यों लग रही है। तो मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, कमेंट्स को रिप्लाई कर देता था, ये वो, मैं सच ही बोलता हूँ, जो फैक्ट्स होते हैं बस वो बोलता हूँ। इसलिए मैंने अपना टैगलाइन बनाया और मैं हर वीडियो के एंड में बोलता भी हूँ कि मैं तो सच बोलता हूँ बुरी अपने आप लगती है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

0: बजा दूं, गाना बजा दूं।
1: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ। यश, जब पहली बार किसी वीडियो पे मिलियन में व्यूज गए थे तो वो फीलिंग क्या थी?
2: मैं आपको बताता हूँ कि मिलियन से पहले मेरा जो किस्सा है वो है 100K का।
1: ओके।
2: तो मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था जब, तो 1000 व्यूज, 700, 800, 1200 मैक्सिमम इतने आते थे, ठीक है। तो जैसे लोगों को तो ना चुलकी 10K पे स्टोरी लगाएंगे हम, तो स्टार्टिंग में है ना, यहाँ से 2 साल पहले की बात, 2.5 साल की। तो मैंने एक सीरीज शुरू की थी खुद से, मैं घर पे कंटेंट बनाता था मम्मी और बहन के साथ। घर का छोटा बेटा, घर का एक लौता बेटा जो करते हैं ना, उनका घर का छोटा बेटा क्या होता है, उसको करना धरना कुछ नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो मैं फ्रंट कैम लेके मेरी मम्मी सामने बैठी थी और मैं कुछ भी मतलब रेंट करता था कि मैं ये मुझे गाड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। तो ठीक है, बना रहा था तो वीडियो चली, 2000-5000 व्यूज आए। तो मेरे लिए 5000 बड़ी बात है यार, मैंने कहा 10K हो जाएंगे शायद इस पर, और 10K के बाद स्टोरी लगाऊंगा। तो मेरे से स्किप हो गया 10K। जब हुए थोड़े एक दो घंटा, मैंने देखा तो वो 50,000 थी। मैंने ये क्या हुआ, मैंने 50,000, मैंने 10K पे तो स्टोरी लगानी थी। मैंने कहा अब देखते हैं कहाँ जाती है, अब सीधे 1,00,000 पे स्टोरी लगेगी। तो मेरी बहन भी जाग, रात को हम सो नहीं रहे हैं कि 100K मेरे लिए था कि क्या हो रहा है बवाल ये। तो मेरी बहन भी जाग रही, रात को 1:30 बजे की बात है और उसका मैसेज आया, भैया 99K हो गए हैं व्यूज आपकी वीडियो बना, मैं भी देख रहा हूँ 100K हुए। तो मैं ऊपर से नीचे आया, मेरा रूम ऊपर है रूफ टॉप पे, तो मैं नीचे आया, वो आयो करे 100K हो, मेरा 100K ये क्या हो गया। मतलब मेरे लिए 100K बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जब नहीं, मतलब लोग कहते हैं 10K पे स्टोरी लगाएंगे, 40,000 पे लगाएं, 50,000 पे, मेरी जो फर्स्ट अचीवमेंट की स्टोरी थी वो थी 100K की। कभी मैंने 10,000 की लगाई ही नहीं है। मतलब ये कहते हैं ना कि आपने कुछ सोचा लेकिन भगवान ने उससे बड़ा सोचा हुआ है, तो मैंने 10,000 सोचा था, भगवान ने मुझे सीधे 1,00,000 व्यूज दिए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद तो 1,00,000-2,00,000 व्यूज आते रहते थे। वो मैंने सीरीज चलाई थी पूरी, 25-30 वीडियो बनाई थी मैंने, घर का इकलौता बेटा, छोटा बेटा। तो वो इतना इंगेजमेंट आने लगा, इतना आने लगा कि जब मेरा फर्स्ट मिलियन आया तो मुझे था कि मिलियन ठीक है, ओके नेक्स्ट, ऐसे। तो ये सीन था। तो मैं मिलियन पे इतना खुश नहीं हुआ था, मिलियन मेरे लिए था कि ओके और आगे करते हैं। बट मिलियन तक मेरी जर्नी ऐसी हो चुकी थी कि वो नॉर्मल था मिलियन मेरे लिए, लेकिन 100K मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, 1,00,000 व्यूज वीडियो पे।
1: जी जी जी, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है यश शर्मा। ओके यश, आप बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के पीछे इतना क्यों पड़े हो, मतलब क्या रीजन क्या है?
1: यार बिग बॉस शायद लोगों के लिए ना शो होगा, मेरे लिए मेरी ही जर्नी है। मतलब मैं बिग बॉस को ना जीता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं बिग बॉस के अंदर ही हूँ। और ऑब्वियसली मेरा सपना है बिग बॉस जाना है, आई मैनिफेस्ट कि मैं बिग बॉस जाऊँगा एक दिन। तो जब मैं कंटेंट बनाता हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं रील बना रहा हूँ किसी के लिए या फिर उसको रोस्ट कर रहा हूँ। मैं फील करता हूँ कि मैं शो के अंदर हूँ, मैं घर के अंदर हूँ। तो अगर मैं जो सामने वाला बंदा जो भी कंटेस्टेंट है, अगर वो मेरे सामने ही हरकत करता तो मैं उससे कैसे बात करता? मैं उसको वही रिप्लाई देता जो मैं अपनी वीडियो की स्क्रीन पर, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर दे रहा हूँ। मैं अपने आपको इमेजिन करता हूँ शो के अंदर और मैं वही बातें करता हूँ जो जब मैं शो में जाऊँगा, जिस एटीट्यूड से, जिस तरीके से बात करूँगा, सेम वही है। तो यही है मेरा, मैं बिग बॉस के पीछे नहीं पड़ा हुआ। मैं बिग बॉस के घर को अपना ही घर मानता हूँ, अपनी जर्नी मानता हूँ। मतलब लोग एक सीज़न करते हैं, मैं जिस सीज़न से देख रहा हूँ मैंने वो सारे सीजन्स किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और अब 2 साल से तो मैं बिग बॉस पे कॉन्टेंट बना रहा हूँ, तो आई फील कि मैं बिग बॉस 20 में भी हूँ। और कोशिश मेरी बहुत ज़्यादा थी कि अब मुझे लोग DM करते हैं, आप क्यों नहीं आ रहे बिग बॉस में, नहीं बुलाया या फिर क्या चीज़ है। तो मैंने इस बार बोला भी है लोगों से कि बिग बॉस 20 में मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन इस बार बिग बॉस 20 से मेरा नाम 100% जुड़ने वाला है।
0: क्या बात है। और अगर मैं पूछूं कि इस सीज़न में जितने भी मेंबर्स आए हैं उसमें आपका फेवरेट कौन है और वो क्यों है?
1: यार अगर फेवरेट या फिर आप बोलो कि इसको सपोर्ट करना चाहते हो, तो मैं गुल्लू को तो सपोर्ट करना चाहता हूँ ऑब्वियसली। बट अभी गुल्लू ना बफर मोड पे है, शायद वो एक हफ्ते बाद रिज्यूम करेगा अपने आप को। बट अगर ऑब्वियसली गुल्लू मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाला है। बट अगर आप अभी करंटली पूछ रहे हो क्या किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो काजी भाई हमारे लॉर्ड काजी हैं। अगर आपको पता हो तो फेम गुरुकुल, अगर आपको पता हो तो फेम गुरुकुल में उन्होंने अरिजीत सिंह को हरा कर वो शो जीते थे आज से 20 साल पहले, जब वोटिंग के पैसे लगते थे, अब तो हम फ्री करते हैं ना, तब उन्होंने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था वोटिंग के लिए। तो अभी वो सिंगिंग के लिए उनका फैन नहीं हूँ, लेकिन वो घर आके जो क्रेजी ब्रेन रॉट कंटेंट दे रहे हैं ना बिग बॉस में, मतलब वो मुझे इतना तगड़ा लगता है। वो बंदे ने क्या करा कि अंदर ना शोर मचा दे, केओस की मैं बीमार हूँ, मुझे मेडिकल रूम में बुलाओ, पूरे घर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया वो बंदा। जब बुलाया से मेडिकल रूम में, एपिसोड में क्लिप डाली है, तो डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं, मैं तो एक्टिंग कर रहा था।
0: क्या बात,
1: शो को कंटेंट दे रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनका भाई साहब, वो हर चीज़ में ना एक लास्ट में तकिया कलाम जोड़ता है, जैसे मैं अपना जोड़ता हूँ, तो वो बोलता है आई एम अ रॉक स्टार बेबी, तो वो बहुत सही लगता है मुझे, बहुत ऐसी आती है। तो करंट फेवरेट काजी है, बट आई विल सपोर्ट गुल्लू फॉर श्योर।
0: ओके नाइस, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: कर गई चुल।
1: ब्रेक के बाद वेलकम बैक, मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है खास मुलाकात। सो यश, अब आपके एक और टैलेंट की बात करते हैं और वो है रैप। सो व्हाई डोंट यू गिव अस अ लिटिल रैप राइट हियर।
2: ओके, काफी टाइम हो गया बट ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, रैप तो बनता ही है
1: जी।
2: इत्मीनान से हूँ बेटा घर पे, पर मैं शांत नहीं हूँ, पीठ पे है खाए खंजर पर मैं नाराज नहीं, जिन्होंने नहीं दिया साथ उनके साथ भी हूँ, कड़वे शब्द बोलता हूँ मैं, सच की आवाज भी हूँ, मेरे दुश्मन

0: जान बड़बड़ाते रहते हो, घर वाले परेशान है, हैरान है जमाना के मैं कैसे बढ़ता जा रहा हूँ, गुमनाम ये जमाना के मैं आगे बढ़ता जा रहा, मुझे नहीं पता एक दिन में कितने गाने बना रहा, सीने में है आग बस उसको भड़का रहा हूँ, जॉनर की बात है तो हिप हॉप मेरी जान, मेरा हसल जिंदाबाद उसी से करना है नाम, मेरे आने से जाने कितने हो गए गुमनाम, बाकी हेटर्स को सलाम, तुमने छेड़ा ये तूफान, यो शाउट आउट मेरे सपने मेरी माँ को, दोनों से मिलता हौसला दोनों से प्यार, यो खुदा करे रहमत संभालो परिवार को, इसी में मेरी जीत इसी में मेरी हार ब्रो।
1: ओके ये तो अनएक्सपेक्टेड था भाई। तो आज हमने यश के कंटेंट क्रिएटर वाले साइड को भी जाना, उनकी जर्नी के बारे में सुना और रैपर यश को भी ऑफिशियली सुन लिया। तो आज की खास मुलाकात में यश शर्मा के साथ हुई एकदम कैंडिड कॉन्वर्सेशन, उनके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से लेकर मिलियन व्यूज तक, रोडीज ऑडिशन से लेकर रैप तक। यश थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और दोस्तों अगर आपको आज की ये खास मुलाकात पसंद आई हो तो जुड़े रहिए रेडियो महारानी के साथ। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं खास मुलाकात ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर with Bollywood never stops,
5: with Bollywood never stops,
6: picture perfect music loaded।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है। अच्छा कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह से काम करते करते अचानक दिमाग बोलता है कि बस भाई अब थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता है। तो मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर। लेकिन बातों को थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक हो जाए। एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए। सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए। आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ। रुकी नहीं सांसे तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ देखो ना घूमते जा रहा हूँ। कि टूटे ना हिम्मत इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ। मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है। जब बैठा वो छाँव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला। इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं घर लौटू ये बाप नहीं चाहते हैं। जब पेट हो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं। पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है। कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा। मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

सामने हो। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था, पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

कुछ कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दें।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका वेट दृश्यम के फैंस काफी टाइम से कर रहे थे। दृश्यम द कंक्लूजन जो 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर बनके सामने हैं। वही विजय जिसके लिए फैमिली को बचाने के लिए सच को छुपाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कहानी में पुलिस भी पहले से ज्यादा प्रिपेयर है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी टाइट है, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन और विजय के माइंड गेम्स इंटरेस्टिंगली चलते हैं। सेकेंड हाफ में स्टोरी कोर्टरूम ड्रामा की तरफ जाती है, जहां प्रकाश राज भी अपना स्ट्रांग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। लेकिन अगर किसी ने इस बार पूरी फिल्म को सरप्राइज किया है तो वो है जयदीप अलावत। इनफैक्ट रिव्यू के हिसाब से जयदीप अलावत इतना पावरफुल परफॉर्म करते हैं कि कई मोमेंट्स में वो अजय देवगन से भी स्पॉटलाइट ले जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म सिर्फ पहली 2 मूवीज को रिपीट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती, बल्कि अपनी एक अलग नरेटिव बनाने की कोशिश करती है। तो ओवरऑल अगर आप दृश्यम के फैन हैं तो ये कंक्लूजन आपको सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन और विजय के दिमाग के नए गेम्स के साथ एंगेज रखता है। और हाँ, इस बार एक बात याद रखिएगा कि विजय सालगांवकर को कॉर्नर करना शायद इजी है, लेकिन हराना वो अभी भी मुश्किल है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा, या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को, या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और अगर आपको रोमांस के नाम पर वो टिपिकल बॉलीवुड फॉर्मूला देखने की आदत है ना, जिसमें लड़का लड़की को देखता है, प्यार होता है, थोड़ा ड्रामा होता है और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है, तो पूजा मेरी जान उस फॉर्मूले को सीधा चैलेंज करती है। जी हाँ, 2 अक्टूबर को Z5 पर रिलीज हुई ये हिंदी थ्रिलर एक लव स्टोरी से ज्यादा ऑब्सेशन जेंडर बायस के अराउंड घूमती है। फिल्म में मृणाल ठाकुर है पूजा के रोल में, जिसके पीछे

कीत नाम का लड़का ऑब्सेस हो जाता है। पूजा उसे बार बार सिर्फ फ्रेंड के तौर पर देखती है, लेकिन रिजेक्शन के बाद सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि पूजा की पूरी लाइफ उलट पुलट हो जाती है। इसके बाद कहानी कोर्ट रूम और फ्लैशबैक्स के बीच मूव करती है, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि काफी देर तक आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सही कौन है और गलत कौन है। मृणाल ठाकुर ने पूजा के फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस को काफी कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। विक्रम सिंह चौहान अनिकेत के करेक्टर में आपको इरिटेट भी करते हैं और कुछ मोमेंट्स में उसके लिए सिंपैथी भी फील होगी आपको। फिल्म का सब्जेक्ट फैमिली जरूर लग सकता है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट सवाल जरूर छोड़ती है कि किसी को रिजेक्ट करना किसी को हर्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले को आपकी हाँ मिलनी ही चाहिए यार। ओवरऑल पूजा मेरी जान एक कॉम्पैक्ट वन टाइम थ्रिलर वॉच है, स्पेशली अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा के साथ थोड़ा सोशल एंगल भी पसंद है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी ने आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग घुमाया है तो वो है हमारे विजय। जी हाँ, दृश्यम 3 थिएटर्स में आ चुकी है और इस बार भी मामला वही है। क्राइम से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्राइम को कवर करने का जुगाड़। अजय देवगन की फिल्म ओपनिंग वीकेंड में करीब 174 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 275 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब मजेदार बात यह है कि दृश्यम देखने के बाद ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो मूवी इंजॉय करती है और दूसरी जो घर जाकर फैमिली मेंबर्स को सस्पिशियस नजरों से देखती है। मतलब अगर आपके घर में कोई अचानक आपसे पूछ ले कि कल रात तुम कहाँ थे तो भाई जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि विजय से इंस्पिरेशन कुछ ज्यादा ही मिल चुकी है। दृश्यम 3 ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है बॉलीवुड में कहानी पुरानी हो सकती है लेकिन सस्पेंस का ऑब्सेशन अभी भी नया है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

जिन तलवों को आदत उसका चीज अमीन की, अक्सर पांव फिसलते उनके उस चिकनी फर्श पे। इन दीवारों से घबराता ये दिल मेरा नादान, इस बेचैनी को केवल ये बेबस खिड़की समझे। देखा शहर पूरा छान, कमी रंगों की मिली, कमी समय की कमी उन ठहरे लम्हों की मिली। सबको मंजिल की तलाश, कमी रस्तों की मिली, कितनी लाशों की ये भीड़।

0: खेत की मेंढ छोड़ गए तेरे पाम भाग गए, पर बटिया पे निशान आज भी है। सूट पैंट गेर लिए दही पे मानस, पर तेरे मारा हुआ पगड़ी परेशान आज भी है। तेरे मारा हुआ पगड़ी परेशान आज भी है।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: और अब बॉलीवुड से थोड़ा साउथ साइड चलते हैं, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम सुनते ही एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती हैं। बात हो रही है जूनियर एनटीआर और केजीएफ फेम प्रशांत नील की मच अवेटेड फिल्म ड्रैगन की। कुछ टाइम से रूमर्स चल रहे थे कि जूनियर एनटीआर की इंजरी की वजह से फिल्म की शूटिंग और रिलीज डेट डिले हो सकती है, क्योंकि जूनियर एनटीआर के हाथ में इंजरी के बाद सर्जरी हुई थी और उन्हें कुछ हफ्तों के रेस्ट की एडवाइस दी गई थी। लेकिन अब मेकर्स ने रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया है। प्रोड्यूसर रवि शंकर यलमंचली ने कंफर्म कर दिया है कि ड्रैगन अपनी अनाउंस्ड रिलीज डेट पर ही थिएटर्स में आएगी, जो कि है 11 जून 2027। और इंटरेस्टिंगली एनटीआर के रिकवर होने के दौरान प्रशांत नील फिल्म के वो पोर्शंस शूट कर रहे हैं जहां जूनियर एनटीआर की नीड नहीं है, मतलब हीरो रेस्ट पर है लेकिन डायरेक्टर का कैमरा रुकने वाला नहीं है भाई। फिल्म में एनटीआर की अपोजिट रुक्मणी वसंत नजर आएंगी और अनिल कपूर भी नार्कोटिक्स ब्यूरो चीफ के इम्पोर्टेंट रोल में है। तो फिलहाल ड्रैगन की रिलीज डेट लॉक्ड है और प्रशांत नील के डायरेक्शन में जूनियर एनटीआर, अनिल कपूर और एक मैसिव एक्शन वर्ल्ड, ये कॉम्बिनेशन देखने के लिए 11 जून 2027 कैलेंडर में मार्क करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

0: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
1: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
0: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

की बात हो ही रही है तो अब देखते हैं कि थिएटर में ऑडियंस का रिस्पॉन्स है टिकट विंडो पर कैसा दिख रहा है। जी हाँ, 2 अक्टूबर को रिलीज हुई अजय देवगन और जयदीप अलावा स्टार है दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग से ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया था और अब फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 4 दिन में वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है और मंडे को फिल्म ने ग्लोबली अराउंड 30.20 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद इसका 4th डे वर्ल्ड वाइड टोटल पहुंच गया है अराउंड 303 करोड़। बाप रे, ओवरसीज में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक फिल्म ने 4 दिन में ओवरसीज मार्केट से अराउंड 60 करोड़ कलेक्ट कर लिए हैं। मतलब विजय सलगांवकर का गेम स्क्रीन पर जितना सस्पेंसफुल है, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की जर्नी उतनी ही फास्ट निकली भाई। अब देखना ये है कि दृश्यम 3 की ये रेस आगे कितनी दूर तक जाती है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता है।

0: शर्नैक्सस।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: और अगर थिएटर्स के बाद थोड़ा ओटीटी का मूड हो तो एक फ्रेश रिकमेंडेशन नोट कर लीजिए, दुपहिया 2-1 अक्टूबर को अमेजोन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो चुकी है और आते ही सीरीज ने ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना ली है। पहले सीजन की कॉमेडी और धड़कपुर गांव की क्विर्की दुनिया अगर आपको पसंद आई थी तो सेकेंड सीजन में भी वही देसी ह्यूमर और एंटरटेनमेंट कॉन्टिन्यू है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 एपिसोड की दुपहिया 2 फिलहाल प्राइम वीडियो पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। गजराज राव, स्पर्श, भुवन अरोड़ा, शिवांगी जोशी और यशपाल शर्मा जैसे एक्टर्स एक बार फिर कास्ट का पार्ट है। और IMDB पर भी सीरीज को 10 में से 8.6 की रेटिंग मिल रही है। मतलब अगर वीकेंड के बाद आप सोच रहे हैं कि कुछ लाइट और एंटरटेनिंग देखते हैं तो दुपहिया 2 को वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूँ सूरज प्रकाश हॉस्पिटल आरोग्य केंद्र फरीदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे कैंसर वैक्सीन के बारे में, जिसमें सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध है और ये जनरली मैं कहूँगा एडोलेसेंट्स में लगाना चाहिए, जब शादी से पहले जब यंग एज होती है। तो इसकी दो डोजेज होती हैं जो ये लगाते हैं, एक पहली डोज और एक 6 महीने की बाद की डोज। और ये आजकल क्वाड्रीवेलेंट स्ट्रेन में आ गई है, जिसमें 4 स्ट्रेन से ये प्रोटेक्ट करती है। तो मैं सभी फीमेल्स को ये अपील करता हूँ कि जो भी इस आयु में है 10 से 20 साल के बीच में और जो शादीशुदा नहीं है, वो ज़रूर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं और सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज की डेट में ये वैक्सीन मेल्स में भी लग रही है, मतलब पुरुषों में भी लग रही है, और देखा गया है कि ये वैक्सीन बेसिकली मेल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करती है। जैसे लैटरिन के जगह का कैंसर या स्किन का कोई कैंसर, उसमें भी ये वैक्सीन कम करती है। तो मैं अपील करूंगा कि ये मेल्स को भी लगवानी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर कॉलिंग।

0: हटके।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: अच्छा, कभी कोई पुराना गाना अचानक से बज जाए ना, तो पता नहीं क्यों हम प्रेजेंट में होके भी सीधा पुरानी मेमोरीज में पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक गाना है, देखा तुझे तो हो गई दीवानी, 1997 की फिल्म कोयला का। माधुरी दीक्षित स्क्रीन पर और पीछे से अलका याग्निक की आवाज, बस फिर और क्या चाहिए भाई। इस गाने में माधुरी का करेक्टर गौरी, शाहरुख के करेक्टर शंकर के प्यार में है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म में शंकर एक ऐसा करेक्टर है जो बोल ही नहीं सकता, तो ये गाना उस खामोश मोहब्बत को और भी खूबसूरत बना देता है। अलका याग्निक के साथ कुमार सानू की आवाज, लिरिक्स इंदीवर के और म्यूजिक राजेश रोशन का, मतलब 90s का प्रॉपर म्यूजिकल पैकेज है भाई इस गाने में। और कोयला की स्टोरी भी सिंपल लव स्टोरी नहीं थी, गौरी एक जबरदस्ती के रिश्ते में फंस जाती है और शंकर उनकी हेल्प करता है, और फिर दोनों के सामने शुरू होता है एक डेंजरस एस्केप। लेकिन ऑनेस्टली ये गाना आज भी प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुआ है। और इसी के साथ अब मैंने गानों की बात करी ही दी है और वक्त भी गाने का हो गया है, तो एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हट।

सिनेमा का कैप्सूल में अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका टाइटल सुनते ही लगता है भाई संभल के। उड़ता तीर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की कॉमेडी जो 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आ रही है। फिल्म में आयुष्मान एक पाकिस्तानी स्पाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे। स्पाई मूवीज में एक चीज बहुत कॉमन होती है, हीरो की आइडेंटिटी सीक्रेट होती है, लेकिन बॉलीवुड में ट्रेलर आते ही हम सबको सब कुछ पता होना चाहिए। और आयुष्मान का देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उनका कैरेक्टर जितना अंडर कवर है उतना ही शायद हमारी अटेंशन कवर भी होने वाली है। तो इस वीकेंड अगर आपको सीरियस थ्रिलर नहीं थोड़ी कॉमेडी प्लस पाए वाला तड़का चाहिए तो

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अभी तक हम 90s के गाने और फिल्मी स्टोरीज में खोए हुए थे, लेकिन अब एक सीरियस अपडेट भी है भाई, जो मुंबई की फिल्म सिटी से आ रही है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मच अवेटेड फिल्म रामायणा के टेम्परेरी सेट पर मंडे को आग लग गई और वीडियो सामने आते ही ऑब्वियसली फैंस के बीच भी कंसर्न बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फायर फिल्म सिटी में एक टेम्परेरी सेट के PCR में लगी थी। वायरिंग केबल्स, वुडन मटेरियल, AC यूनिट और शूटिंग इक्विपमेंट तक इसका असर हुआ है। लेकिन रिलीफ की बात यह है कि फायर को लगभग एक घंटे के अंदर कंट्रोल कर लिया गया और किसी के इंजर्ड होने की रिपोर्ट नहीं है। हाँ, पास में शूट हो रहे पति पत्नी और पंगा 2 और MTV हसल 5 के सेट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि लोकेशंस नियर बाय थी। अभी डैमेज को लेकर कंप्लीट पिक्चर सामने नहीं आई है, लेकिन थैंकफुली किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: कर गई चुल।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: और अब बात एक ऐसी फिल्म की जिसका पोस्टर देखकर ही लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब्बास मस्तान की न्यू थ्रिलर थ्री मंकीज अनाउंस हो गई है और नाम सुनते ही याद आते हैं वो थ्री वाइज मंकीज, जिनका कहना है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन फिल्म में इनका मंत्र थोड़ा अपडेट हो गया है। अब इनका कहना है कि सब देखो, अपनी सुनो, बेखौफ बोलो। फिल्म में विशाल जेठवा, मुस्तफा और तेंजिन नजर आएंगे अमर अकबर और एंथोनी के रोल्स में। मोशन पोस्टर में तीनों मास्क्ड लुक में किसी डेंजरस काम की तरफ जाते दिख रहे हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड बिल्कुल केयर फ्री दिख रहा है। और अब्बास मस्तान की फिल्म है तो ऑब्वियसली जो स्क्रीन पर दिख रहा है जरूरी नहीं वही पूरी कहानी हो। अर्जुन रामपाल भी फिल्म का पार्ट है और उनका करेक्टर संजय है। और स्टोरी को भी अभी सीक्रेट रखा गया है। बस इतना कंफर्म है कि ये थ्रिलर 4 दिसंबर 2026 को थिएटर्स में आएगी। तो अमर अकबर और एंथोनी इस बार कॉमेडी नहीं बल्कि कुछ बड़ा खेल खेलने आ रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही एक चीज दिमाग में आती है, रजनीकांत का स्वैग। जी हाँ, जेलर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और टाइगर मुथुवेल पांड्यन एक बार फिर फुल फॉर्म में वापस आ गए हैं। ट्रेलर में रजनीकांत का वही सिग्नेचर स्टाइल, एटीट्यूड और एक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब स्क्रीन पर एंट्री हो और मास मोमेंट ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। लेकिन इस बार एक और चीज ने सबका अटेंशन खींच लिया है, वो है विद्या बालन। विद्या फिल्म में कांता के रोल में नजर आ रही है और उनका लुक एकदम डिफरेंट है। शॉर्ट हेयर, डार्क स्टाइलिंग और एक मिस्टीरियस सी वाइब। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रजनीकांत और विद्या बालन पहली बार साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अब इन दोनों के कैरेक्टर्स का कनेक्शन क्या है और विद्या का कैरेक्टर स्टोरी में क्या ट्विस्ट लेकर आएगा, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा भाई। और ये फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में आ रही है। तो टाइगर मुथुवेल पांड्यन के स्वैग के साथ साथ विद्या बालन का ये नया अवतार कॉम्बो इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ना भाई। तो अब बस देखना ये है कि ये मूवी कितना धमाल मचाएगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर।

Hi, I'm Dr. Tanu. I am a MD medicine diabetologist. I've been practicing for last 10 years. And yes, I also run a supplement company. I am a fellow in regenerative medicine. And my advice today comes for women who have done their first inning and now they're in their second inning. पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेस ऑफ योर लाइफ वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी। अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 चीज़ों पर ध्यान दें। पहली चीज़, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर। सेकेंड, प्रोटीन, एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक 40 साल की जिंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें। अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर। थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती। यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर, यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है। फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज्ड, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो। इस टाइम पे बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, बहुत लोग बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं अपने पार्टनर से, दे आर गोइंग थ्रू अ एरे ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग वेन यू आर सेटिंग विद राइट पीपल। पांचवी चीज़, यू विल हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज अब आपकी जैसा आपका पहले जैसा सुंदर दिखना, आपकी डाइट का चेंज होना, आपका वेट गेन होना, आपका बहुत वेट गेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी। ये पांचवी चीज़ का आपको बहुत

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अगर आपको रियलिटी शोज में ड्रामा, सीक्रेट और थोड़ा सा भाई ये क्या हो रहा है वाला एंटरटेनमेंट पसंद है ना, तो ये अपडेट आपके नाम का है भाई। लॉकअप एक बार फिर अपनी जेल का दरवाजा खोलने के लिए रेडी है। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली सीजन 2 अनाउंस कर दिया है। हाँ, फिर से नए कंटेस्टेंट्स, नए सीक्रेट और नए कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ सेलिब्रिटीज जेल के अंदर जाने वाले हैं। पहले सीजन में श्रेया कालरा विनर बनी थी और शिवांगी जोशी फर्स्ट रनर अप रही थी। और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फराह और रितेश देशमुख एक बार फिर जेलर डुओ के तौर पर वापस आ रहे हैं। मेकर्स ने अभी रिलीज डेट या कंटेस्टेंट्स की लिस्ट रिवील नहीं की है, बस इतना प्रॉमिस किया है कि इस सीजन में स्टोरीज भी नहीं होंगी, पर्सनालिटीज भी नहीं होंगी और सरप्राइजेस भी नहीं होंगे। तो अब देखना यह है भाई कि इस बार

अप में कौन एंट्री लेगा और किसकी लाइफ के सीक्रेट्स सबसे पहले बाहर आएंगे। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड से थोड़ा सा हटकर हॉलीवुड का सीन देखते हैं। इस हफ्ते बेन एफ्लेक लेकर आ रहे हैं एनिमल्स, जो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म क्राइम थ्रिलर जोन में है और कास्ट में है गिलियन एंडरसन, स्टीव योन और केरी वाशिंगटन। स्टोरी में है किडनैपिंग, क्राइम और फैमिली क्राइसिस का मिक्स है, यानी वो वाली मूवी जिसमें आप आराम से पॉपकॉर्न लेकर बैठते हो और अगले 10 मिनट तक सोचने लगते हो कि मैंने किस टेंशन में खुद को डाल दिया। और बेन एफ्लेक को देखकर एक बात तो तय है, हॉलीवुड में आदमी चाहे कितना भी प्रॉब्लम में हो, बैकग्राउंड स्कोर इतना ड्रामेटिक जरूर होगा कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो अगर आपको कॉमेडी रोमांस से थोड़ा ब्रेक लेकर क्राइम सस्पेंस और सीरियस थ्रिलर वाला मूड चाहिए तो एनिमल इस हफ्ते की वॉच लिस्ट में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, पॉपकॉर्न अपने रिस्क पर खाना, क्योंकि थ्रिलर में सस्पेंस बढ़े तो पॉपकॉर्न अक्सर हाथ से नीचे आ जाते हैं। ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

बॉलीवुड गॉसिप हुई, कुछ नए अपडेट्स भी मिले। मैं हूं पलक और आप सुन रहे थे फिल्मी फ्लेवर सिर्फ 89.6 रेडियो महारानी पर। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूं, कल फिर मिलूंगी इसी जगह इसी टाइम। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: एक सवाल है, अगर दिवाली की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो जाए तो?
2: कपड़े?
1: हाँ।
2: ज्वेलरी?
1: बिल्कुल।
2: होम डेकोर, गिफ्टिंग और फेस्टिव कलेक्शन?
1: सब कुछ, क्योंकि आ रहा है द दिवाली सवारी बाय इलाही बाय ऋतु। 70+ एग्जिबिटर्स के साथ फरीदाबाद की ग्रैंड फेस्टिव एग्जिबिशन 15 अक्टूबर, रेडिसन ब्लू, फरीदाबाद, 11 AM to 8 PM।
2: द दिवाली सवारी बाय इलाही बाय ऋतु, बिगर बेटर बोल्डर।

क्या हमारा फोन सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए होता है? नहीं, कभी कभी वो अपने साथ एक ऐसा सवाल लेकर आता है जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। सोचिए, रात के 11:30 बजे आप थके हारे अपने घर लौटते हैं। पूरा दिन काम के तनाव में गुजरा है। आप बस कुछ देर सुकून चाहते हैं और तभी अचानक आपका फोन बजता है। आप फोन उठाने से पहले स्क्रीन देखते हैं, फिर जिस नंबर से कॉल आ रही है उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस नंबर का मालिक अब इस दुनिया में है ही नहीं। आप खुद को समझाते हैं कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, या शायद कोई कोइंसिडेंस, शायद आपका दिमाग थकान की वजह से कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। लेकिन अगली सुबह जब आप अपना फोन ऑन करते हैं, स्क्रीन पर 100 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स दिखाई देते हैं, और वो भी उसी नंबर से, तो क्या होगा? और अगर उन मिस्ड कॉल्स के बाद एक मैसेज आए, क्या तुम मुझे आज भी याद करते हो, तो क्या आप उस मैसेज का जवाब देंगे? नमस्कार, मेरा नाम सपना है और आ गई हूँ आपको अपनी कहानियों की दुनिया में ले जाने। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है 136 मिस्ड कॉल्स। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे एक ऐसे शख्स का बार बार कॉल आता है जो कि अब इस दुनिया में ही नहीं है। और मान लीजिए मिस्ड कॉल्स के साथ आपको एक मैसेज भी आए, तो क्या आप उस मैसेज का जवाब देंगे या डर कर फोन हमेशा के लिए बंद कर देंगे? ये कहानी है विवेक की, एक ऐसी रात की जब उसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ सवालों के जवाब वक्त नहीं, वक्त से परे कोई और दे रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि

136 मिस्ड कॉल्स। वो कॉल रात के करीब 11:30 बज रहे थे जब विवेक थका हारा अपने घर पहुंचा। घर के अंदर से दरवाजा बंद करते ही उसने एक लंबी सांस ली। आज का दिन बहुत टायरिंग था। ऑफिस में पिछले कई दिनों से चल रहा एक बड़ा असाइनमेंट आखिरकार पूरा हो चुका था। सुबह से लगातार काम करने के बाद अब विवेक का दिमाग बिल्कुल जवाब दे चुका था। उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और ड्राइंग रूम के बीचों बीच रखी कुर्सी पर बैठ गया। बस अब उसे कुछ देर बिल्कुल चुपचाप रहना था। और तभी पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गई। विवेक ने गुस्से में आकर कहा, सीरियसली? और साथ ही अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट भी ऑन कर ली, क्योंकि घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, इसलिए पूरे घर में एकदम सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले पानी पीता हूं फिर सो जाऊंगा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। विवेक ने स्क्रीन की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी नींद और थकान जैसे गायब सी हो गई। स्क्रीन पर एक नाम था, अमित। विवेक कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा। अमित उसका सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन उसे मरे हुए अब पूरे 6 साल हो चुके थे। फोन बजते बजते कट गया। विवेक ने अपने आप को झंझोड़ते हुए खुद को समझाया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी या किसी ने ये पुराना नंबर एक्टिवेट किया होगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फोन फिर बजा और उस फोन की स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, अमित कॉलिंग। इस बार विवेक के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कॉल उठाने के लिए उंगली बढ़ाई, लेकिन उससे पहले ही फोन कट गया। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, हर बार वही नंबर, हर बार कॉल कुछ सेकंड्स में ही कट जाती। विवेक इतना घबरा गया कि उसने तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। बस बहुत हो गया, ये कहकर वो अपने कमरे में गया। इतना थका हुआ था कि उसने जूते तक नहीं उतारे और सीधा बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही सेकंड्स में उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुबह कोई उसका इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि सुबह उसके फोन में सिर्फ एक या दो नहीं, पूरी 136 मिस्ड कॉल्स थे। क्या अमित की कॉल सच में टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कुछ और? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि

सुबह करीब 7:30 बजे जब विवेक की आंख खुली, सिर भारी था और रात की सारी बातें उसे धीरे धीरे याद आने लगी। उसने करवट बदली और फोन उठाया। फोन स्विच ऑफ था। उसने पावर बटन दबाया और कुछ ही सेकंड्स में फोन ऑन हो गया, पर स्क्रीन देखते ही विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया। 136 मिस्ड कॉल्स? उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने स्क्रीन को दोबारा से देखा। शायद उसे ठीक से नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि कुछ कॉल्स उसके टीममेट्स के भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, सारी कॉल्स एक ही नंबर से थीं, अमित। विवेक कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठ गया। उसने तुरंत उस नंबर को कॉल बैक किया। एक रिंग हुई, दूसरी, तीसरी, और फिर अचानक वो कॉल कट गई। विवेक ने फोन नीचे रख दिया। उसने सोचा शायद किसी ने अमित का पुराना नंबर खरीद लिया होगा, लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल आया, अगर किसी और के पास वो नंबर है तो उसे विवेक का नंबर कैसे मिला और एक ही रात में 136 कॉल्स क्यों? और तभी उसे एक आइडिया आया, फोन करने से पहले मैसेज करके देख लेता हूं। उसने लिखा हाय और मैसेज सेंड कर दिया। करीब 10 सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया और फिर एक रिप्लाई की नोटिफिकेशन आई। विवेक ने मैसेज खोला, सिर्फ एक लाइन थी, हाय विवेक, क्या तुम मुझे आज भी याद करते हो? विवेक की उंगलियां फोन पर ही रुक गई। ये कोई रैंडम आदमी नहीं था। उसे विवेक का नाम पता था। विवेक ने तुरंत रिप्लाई किया, हु आर यू? लेकिन कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं आया। फिर फोन पर टाइपिंग दिखाई दी, 3 डॉट्स, फिर गायब, फिर 3 डॉट्स। विवेक की नजरें मानो स्क्रीन पर जम गई थीं। अचानक एक और मैसेज आया, तुम्हें सच में नहीं पता मैं कौन हूं? विवेक ने घबरा कर तुरंत अपना फोन एक साइड फेंक दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। विवेक चौंक कर खड़ा हो गया। वो बहुत डर गया था, पर फिर भी वो धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। फर्श पर उसकी पुरानी फोटो फ्रेम पड़ी थी।

विवेक काफी देर तक उस फोटो को हाथ में लेकर खड़ा रहा। 17 अक्टूबर, वही तारीख, पूरे 6 साल पहले अमित की मौत भी इसी दिन हुई थी। विवेक ने तुरंत अपना फोन उठाया और उस नंबर पर दोबारा मैसेज किया, तुम अमित हो, और 4 बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस बार रिप्लाई आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अगर मैं अमित नहीं हूं तो फिर कौन हूं? विवेक की धड़कन और तेज हो गई। उसने तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। बस अब और नहीं, उसने फोन टेबल पर रखा और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा, लेकिन घर से निकलते समय उसकी नजर दरवाजे के पास रखे जूतों पर पड़ी। उसका एक जूता गायब था। विवेक हैरान हो गया। उसने पूरा कमरा ध्यान से देखा, फिर उसे वो जूता बेड के नीचे मिला। और तभी विवेक को याद आया कि रात को तो उसने जूते उतारे ही नहीं थे। फिर उसने सोचा शायद थकान में उसे कुछ याद नहीं रहा होगा। उसने जूते पहने, दरवाजे को लॉक किया और ऑफिस चला गया। लेकिन रास्ते भर उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थीं। दोपहर में अचानक उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तुम्हें कल रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। विवेक तुरंत रुक गया। कल रात? पर वो तो घर पर ही था। उसने मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया और नंबर चेक किया। इस बार नंबर नया था, इसलिए उसने रिप्लाई किया, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया। शाम को ऑफिस से निकलते समय उसे एक और मैसेज मिला। इस बार सिर्फ एक फोटो थी। विवेक ने फोटो खोली, उसमें उसका अपना घर था, बाहर से ली हुई फोटो, और सबसे डरावनी बात, फोटो उसी दिन की थी।

0: विवेक ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सड़क लगभग खाली थी। उसने आसपास देखा पर वहां तो कोई नहीं था। तभी उसने तुरंत अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। लेकिन कार स्टार्ट करने से पहले उसकी नजर डैशबोर्ड पर गई। वहां एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर सिर्फ चार शब्द लिखे थे, अमित से दूर रहो। विवेक ने वो कागज हाथ में लिया और पहली बार उसके मन में डर से ज्यादा एक सवाल आया, आखिर कोई अमित का नाम लेकर उसे धमका क्यों रहा था? कौन था ये शख्स? क्या सच में वो विवेक को धमका रहा था या फिर ये किसी तरह की चेतावनी थी विवेक के लिए? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि
1: कहानी अभी बाकी है।
2: सबने कहा था कि ये जगह सो रही है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि ये क्या सपने देख रही थी। हमें अंदर जाने से मना किया गया था, तो जाहिर है हम चले गए। अब सो जाओ, अपनी आंखें मत खोलो। गलियारे में कोई खड़ा है, रोशनी के बुझने का इंतजार कर रहा है।

हर दरवाजे पर नाम गहराई से खुरचे हुए थे। किसी ने कहा, चलो वापस मुड़ते हैं। फिर किसी ने फुसफुसाया, आवाज मत करो, गलियारा रोशनी से भी आगे फैल

जाती है। चुप हो जाओ। विवेक कई सवालों में अपने आप को घिरा हुआ पा रहा था। अमित का नंबर ब्लॉक करने के बाद एक ऐसे अनजान नंबर से उसे मैसेजेस आ रहे थे जिसे वो पहचानता नहीं था, लेकिन अब उसकी बातें धमकी वाली ज्यादा लग रही थी। शायद कोई उसका पीछा कर रहा था। विवेक ने उस कागज को कई बार पढ़ा जिस पर लिखा था, अमित से दूर रहो। लेकिन अमित तो 6 साल पहले ही मर चुका था, फिर उसके नाम से कोई उसे कैसे धमका सकता था? विवेक ने कागज अपनी जेब में रखा और चुपचाप घर चला गया। उस रात वो इतना डरा हुआ था कि उसने तय किया कि वो अकेला नहीं रहेगा। उसने अपने पुराने दोस्त रोहित को फोन किया। यार रोहित, आज रात मेरे घर ही आ जा। क्यों, सब ठीक है ना? विवेक कुछ सेकंड्स तक तो चुप रहा। बस आ जाना यार, बाद में बताऊंगा। रोहित करीब 10 बजे उसके घर पहुंच गया। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। विवेक ने उसे सारी बात बताई। रोहित ने हंसते हुए कहा, तू ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, हो सकता है कोई तेरे साथ प्रैंक कर रहा हो। विवेक ने कुछ नहीं कहा। रात करीब 11:30 बजे अचानक रोहित की नजर खिड़की पर गई। विवेक, क्या हुआ? वो देख, खिड़की के पास कोई खड़ा है। दोनों ने तुरंत खिड़की की तरफ देखा, पर वहां तो कोई नहीं था। खिड़की के पास जाकर उन्होंने पर्दा हटाया, पर नीचे सड़क बिल्कुल खाली थी। शायद कोई निकल गया होगा। लेकिन तभी विवेक की नजर सड़क के किनारे खड़ी एक काली गाड़ी पर गई। वही गाड़ी पिछले 2 दिनों से उसे अलग अलग जगह दिखाई दे रही थी। विवेक तुरंत नीचे भागा, पर नीचे पहुंचने पर वहां उसे कोई कार नहीं दिखाई दी। शायद वो वहां से जा चुकी थी। विवेक वापस कमरे में आया तो उसका फोन बज रहा था। इस बार कोई कॉल नहीं था, एक मैसेज था। तुम्हें चेतावनी दी थी, विवेक ने कांपते हाथों से लिखा। क्या चाहते हो मुझसे? तुरंत जवाब आया, तुम्हें बचाना चाहता हूं। विवेक कुछ समझ नहीं पा रहा था। बचाना? किससे? उसने फिर मैसेज किया, कौन हो तुम? पर इस बार कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह विवेक ने अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालने शुरू किए। उसे याद आया कि अमित की मौत के बाद उसकी कुछ चीजें विवेक के पास ही रह गई थीं। शायद एक पुरानी डायरी थी। विवेक ने डायरी ढूंढनी शुरू की। काफी देर बाद वो डायरी उसे एक पुराने बॉक्स में मिली। उसने पहला पन्ना खोला। अंदर अमित की हैंडराइटिंग में सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 16th October, और उसके नीचे एक लाइन, अगर कल कुछ हो जाए तो विवेक को ये बात जरूर बताना। विवेक का हाथ वहीं रुक गया, लेकिन अगला पन्ना फटा हुआ था।

क्या था जो विवेक अब तक समझ नहीं पा रहा था? क्या सचमुच अमित उसे कुछ बताना चाहता था, या ये सिर्फ विवेक की एक सोच थी? सब बताऊंगी।

विवेक ने डायरी को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। उसकी नजर बार बार उसी लाइन पर जा रही थी। अगर कल कुछ हो जाए तो विवेक को ये बात जरूर बताना। लेकिन उसके बाद का पन्ना गायब था। विवेक ने डायरी को उलट पलट कर देखा। वो पन्ना किसी एक्सीडेंट में नहीं फटा था, बल्कि उसे जानबूझकर निकाला गया था। उसने तुरंत रोहित को फोन किया। रोहित भाई, मुझे लगता है कि अमित की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी। कुछ सेकंड्स तक दूसरी तरफ चुप्पी थी। फिर रोहित ने पूछा, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? विवेक ने उसे डायरी वाली बात बताई। रोहित ने कहा, आज शाम मिलते हैं, पहले ये पता करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। शाम को दोनों अमित के पुराने घर गए। घर कई सालों से बंद था। समहाउ विवेक के पास उसकी पुरानी स्पेयर की थी। दरवाजा खोलते ही धूल की एक परत उनके सामने थी। अंदर सब कुछ वैसा ही था। पुरानी किताबें, कुछ कपड़े और एक टेबल पर रखा अमित का पुराना लैपटॉप। विवेक ने उस लैपटॉप को उठाया, पर उसकी बैटरी कंप्लीटली डेड थी। विवेक ने उसे चार्ज करने के लिए लगा दिया। करीब 10 मिनट बाद लैपटॉप ऑन हो पाया। विवेक ने लैपटॉप को चेक करना शुरू किया। उसमें बहुत सारे फोल्डर्स थे, पर एक फोल्डर देखकर वो वहीं रुक गया, क्योंकि उस फोल्डर का नाम था विवेक। उसने तुरंत रोहित की तरफ देखा। मेरे नाम का फोल्डर? उसने फोल्डर खोला। अंदर कई फाइल्स थी, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, और एक फोल्डर तो ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी था। और रिकॉर्डिंग की तारीख थी 16 अक्टूबर, रात 11:42। विवेक ने प्ले दबाया। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ आवाजें थी। फिर अमित की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी पर परेशान। विवेक को ये बात अभी नहीं पता चलनी चाहिए। फिर रिकॉर्डिंग में कुछ गिरने की आवाज आई और उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। विवेक ने तुरंत दोबारा प्ले किया, पर इससे पहले कि वो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा पूरा सुन पाता, उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। एक मैसेज था, वो रिकॉर्डिंग मत सुनना। विवेक ने फोन की तरफ देखा और फिर लैपटॉप की तरफ। रोहित ने पूछा, मैसेज किसका है? विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैसेज जिस नंबर से आया था, उस नंबर को विवेक ब्लॉक कर चुका था। और तभी लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या आपको पता है?

विवेक, जो अमित के एक्सीडेंट या मर्डर के बारे में जानने के लिए इतना इच्छुक था कि अमित के घर पहुंचकर उसने उसके लैपटॉप पर एक रिकॉर्डिंग सुनी। ये रिकॉर्डिंग जिस फोल्डर में थी उसका नाम था विवेक। पर जैसे ही उसने इस रिकॉर्डिंग को सुना तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, वो रिकॉर्डिंग मत सुनना। और अचानक तभी अमित का लैपटॉप बंद हो गया और उसके बंद होने के साथ साथ कमरे में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। रोहित ने कहा, तू एक काम कर, इसे छोड़, ये लैपटॉप शायद बहुत पुराना हो गया है इसलिए तो इसे छोड़, हो सकता है ये खराब हो गया हो। लेकिन विवेक अब रुकने वाला नहीं था, उसने अमित के घर की पुरानी चीजें दोबारा देखनी शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक छोटी सी चाबी दिखी, चाबी के साथ एक कागज भी था, उस पर एक एड्रेस लिखा था, वही एड्रेस जिसे विवेक पहचानता था, पुराना हाईवे। ये वही जगह थी जहां 6 साल पहले अमित का एक्सीडेंट हुआ था। अगले दिन ऑफिस खत्म होने के बाद विवेक और अमित वहां पहुंच गए। सड़क अब पहले से काफी बदल चुकी थी लेकिन सड़क के किनारे एक पुराना बंद पड़ा ढाबा आज भी वहीं था। ना जाने विवेक को क्या सूझा, वो तुरंत उस ढाबे वाले के पास पहुंचा और उसके सामने बस अमित का नाम लिया। बूढ़ा आदमी कुछ देर सिर्फ विवेक को टकटकी लगा कर देखता रहा और अचानक बोला, तुम विवेक हो? अब विवेक पूरी तरह से चौंक चुका था। क्या आप मुझे जानते हैं? बूढ़े आदमी ने जवाब देने से पहले चारों तरफ देखा, जैसे वो ये बात तय करना चाहता हो कि कोई उसे नहीं देख रहा। तुम्हारा दोस्त आखिरी बार यहीं आया था। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उसने आपको कुछ बताया था, कुछ कहा था आपसे क्या? बूढ़े आदमी ने कहा, वो बहुत परेशान था, बार बार कह रहा था कि उसे किसी को समय पर रोकना है। किसे? बूढ़े आदमी ने विवेक की तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत एक पुराना लिफाफा निकाला जिस पर लिखा था विवेक। विवेक ने कांपते हुए हाथों से उस लिफाफे को खोलना शुरू किया। अंदर सिर्फ एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, अगर ये तुम्हारे हाथ में है तो समझना कि बात अभी खत्म नहीं हुई। उस कागज के नीचे एक और लाइन लिखी थी, रात 11:30 बजे उस रास्ते पर मत जाना, और घड़ी में वक्त था 10:58। रोहित ने घबरा कर पूछा, विवेक विवेक, क्या आज इस रास्ते से होते हुए तूने कहीं जाने का प्लान किया था? विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अचानक याद आया कि उसे बॉस को एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल देने जाना था, वो भी इसी रास्ते से। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी थे और आज ही इन्हें पहुंचाना भी जरूरी था। विवेक ने तुरंत फोन निकाला लेकिन उसी वक्त उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, 11:30 से पहले घर पहुंच जाओ। विवेक ने रोहित की तरफ देखा और उसके मन में एक सवाल आया, अगर कोई उसे मारना चाहता है तो बार बार बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या सचमुच उसे कोई मारना नहीं बल्कि बचाना चाहता था? पर क्यों? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि

विवेक कुछ सेकंड्स तक फोन की स्क्रीन देखता रहा। 11:30 से पहले घर पहुंच जाओ, रोहित ने कहा। चल चल अभी निकलते हैं। दोनों कार में बैठे और घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में विवेक लगातार अमित के बारे में सोच रहा था। क्यों वही तारीख, क्यों वही समय, और आखिर अमित उसे किस चीज से बचाना चाहता था। अचानक फोन बज पड़ा। इस बार वही पुराना नंबर था। अमित कॉलिंग। विवेक ने कांपते हुए हाथों से कॉल उठा ली। कुछ सेकंड्स तक कोई आवाज नहीं आई, फिर बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। विवेक। विवेक की आंखों में अचानक आंसू आ गए। अमित। दूसरी तरफ से फिर कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद सिर्फ एक बात सुनाई दी, आज वही गलती मत करना, और कॉल कट गई। विवेक ने तुरंत कार रोक दी। उसी वक्त उसे 6 साल पुरानी एक बात याद आई, अमित के एक्सीडेंट वाली रात। विवेक ही उसे बचाने के लिए सड़क पर दौड़ा था। विवेक ने ही एम्बुलेंस को कॉल किया था। विवेक ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद अमित की मौत हो गई थी। विवेक इतने सालों से खुद को इस बात के लिए दोषी मानता रहा कि अगर वो अमित को कुछ मिनट पहले हॉस्पिटल पहुंचा देता तो शायद शायद आज वो जिंदा होता। लेकिन आज आज उसे कुछ और भी याद आया। एक्सीडेंट से कुछ मिनट पहले अमित ने उसे फोन किया था। उसने कहा था, विवेक चाहे कुछ हो जाए आज उस रास्ते से मत आना। लेकिन विवेक ने उसकी बात नहीं मानी थी और उसी रात एक्सीडेंट हुआ था। विवेक की आंखें भर आईं और तभी रोहित ने सामने सड़क की तरफ इशारा किया। कुछ दूर एक ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराया। और दोनों को लगा कि अगर विवेक उस समय उस रास्ते पर होता तो शायद वो भी उस एक्सीडेंट का शिकार हो सकता था। विवेक बिल्कुल चुप था। अब उसे समझ आने लगा था कि पिछले 2 दिनों से जो कुछ हो रहा था वो उसे डराने के लिए नहीं था। 136 कॉल्स, वो मैसेजेस, वो वार्निंग्स, अमित की डायरी और आज का वो आखिरी कॉल, हर चीज उसे एक ही बात से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। जिस दोस्त को विवेक 6 साल पहले बचा नहीं पाया था, आज वही दोस्त 6 साल बाद उसे बचा रहा था। विवेक ने फोन की स्क्रीन देखी। अमित के नंबर से आखिरी मैसेज आया था, अब तुम सुरक्षित हो। कुछ सेकंड्स बाद नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया। विवेक ने फोन सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। वो समझ गया कि कुछ रिश्ते, चाहे वो खून के हों या ना हो, मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। और कभी कभी जिसे इंसान अपनी जिंदगी में डर समझ रहा होता है, वही किसी की आखिरी कोशिश होती है उस इंसान को बचाने की। अमित और विवेक की दोस्ती आज इस तरह से पूरी हुई। अमित ने विवेक की जान बचाकर उसे बता दिया कि उनकी दोस्ती आज भी जिंदा है और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
ये कहानी यहीं खत्म हुई और आज का हमारा सफर भी यहीं विराम लेता है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। नंबर है मेरा 9654-896-896। इंतजार रहेगा मुझे आपके मैसेज का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

वबा से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने, नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो, सुनो।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ही इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक,
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
2: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली तुम बोलते रहो।
1: सुनो सुनो हेलो

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: क्यों फूलों के खिले खिले
2: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
3: है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ।
2: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके
4: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहित तो सब परपंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशान, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कहे मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, जिस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है। गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ऐ शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का। अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं अविनाशी नौका है पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो। देखो, जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं,